0: सिंध असेंबलीअ जी घरू मामलनि वारी स्टैंडिंग कमेटी कचे में सिहत तालीम ऐं समाजी तरक़ीअ लाइ कम करण जी हिदायत करे छॾी। चेयरपर्सन फरियाल टालपुर जी सदारत हेठि इजलास दौरान सूबाई घरू वज़ीर ज़ियाल अंजार पारां कचे जी सूरत हाल ते ब्रीफिंग। सूबाई वज़ीर नासिर शाह चयो त कचे में केतिरनि ई ॾोहारनि सिलेंडर कयो आहे ऐं हथियार पिण हथ कया विया आहिनि। एम डी केट इम्तिहान में थर जो को ॿार पहिरीं पोज़ीशन माणे थो त एतराज़ न थियणु घुर्जे।
1: पंजवीह वरियन जे वक़फ़े खां पोइ हिन भेरे लाहौरी लाॻूतो 10 ॾींहं बसंत मल्हाईंदा। वज़ीर अला पंजाब मरियम नवाज़ लाहौर में 10 ॾींहनि लाइ बसंत मल्हाइण जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। 28 जनवरी खां 7 फेबरवरी ताईं पंजाब में बसंत मल्हाई वेंदी। 5 फेबरवरी ते कश्मीर ॾिहाड़ो मल्हाइण लाइ बसंत जे जशन में हिकु ॾींहं जो वक़फ़ो कयो वेंदो। मरियम नवाज़ चयो आहे त शहरियुनि जी हिफ़ाज़त ऐं सहूलत लाइ गुज़िरियल बसंत खां बि वधीक बहितर क़दम कया वञनि।
0: गंबट वेझो आरीजा बिरादरी जी ॿिनि धुरनि में पैसनि जी ॾेती लेती तां झेड़ो, हिकु ॼणो क़तल, ॿ ज़ख़्मी। बहारो शहर में धुरनि में पैसनि जी ॾेती लेती तां झेड़े दौरान फायरिंग, गोली लॻण सबबि अजीब आरी जो क़तल थी वियो, ॿ ॼणा ज़ख़्मी थी पिया। मक़तूल जो लाश ऐं ज़ख़्मी इस्पताल मुंतक़िल।
1: डॉक्टरनि जे मुतालबनि जी मञता लाइ मुल्क गीर हड़ताल। 11 अक्टूबर ते आल पाकिस्तान डॉक्टर्स कन्वेंशन तलब। सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान ऐं ख़ैबर पख़्तूनख़्वा जे मुख़्तलिफ़ ज़िलनि में ख़ानगी तिबी ख़िदमतूं मुअत्तल रहियूं। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में डॉक्टरनि एहतजाज बि कयो। नई टैक्स पॉलिसी रद्द। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन चयो आहे त मुतालबा मंज़ूर न थिया त मुल्क गीर तिबी ख़िदमतूं अणॼातल मुदे ताईं बंदि करण बाबति फ़ैसिलो कयो वेंदो।

0: लाहौर में मामूली रंजिश सां औरत जो नालो ऐं मोबाइल नंबर रिश्ता ऐप में विझंदड़ रक्षा ड्राइवर गिरफ़्तार। पुलिस कार्रवाई कंदे जवाबदार लतीफ़ खे गिरफ़्तार करे केस दाखिल करे वरितो। डीआईजी ऑपरेशन जो चवण आहे त कुझु ॾींहं अॻु ऑनलाइन रक्षा राइड दौरान औरत ऐं ड्राइवर में बहस थियो। रक्षा ड्राइवर औरत जो मोबाइल नंबर रक्षा ऐप ते रिश्ता ऐप ते अपलोड करे छॾियो। नंबर अपलोड थींदे ई औरत खे लाॻीतो फोन कॉल्स अचण लॻियूं। औरतुनि खे हिरासा करण ऐं ज़ाती ॼाण जो ग़लति इस्तेमालु बर्दाश्त न कयो वेंदो।
1: हैदराबाद में वापारी नरेश कुमार के कत्ल केस में गिरफ्तार ब जवाबदार टिन डीन के जिस्मानी रिमांड से पुलिस हवाले। कत्ल में इस्तेमाल थियल ब पिस्टल भी हथ टंडो यूसुफ पुलिस मूजिब जवाबदार मोहम्मद वकास मुगल असद अली दमाज बाकी बाद हथियार कब्रिस्तान की भित भरसा लिकाया हुआ।
0: दोदापुर में पुलिस अहलकार कूड़े मुकाबले में मारिजी वियल नौजवान के वारसन वट मेड़मिंट काफिलो वठी पहुंची वो वारस ठाह ते राजी। पुलिस अहलकार इलाके के चंगन मुड़सन से गड पाक किताब खड़ी मकतूल नौजवान अली हैदर के वारसन वट पहुंता। काफिले के अगवाणन वारसन के अपील कई तो अहलकार गलती थी है हाँ राजूणी कर डंड भरण लाय तैयार आयु। कुछ महीना अग मीरापुर थाने के हद में बेगारी पुल वट मोटरसाइकिल न रोकण से नौजवान के गोलू हणी कतल कर वो।
1: हैदराबाद के लतीफाबाद वे इलाके में 14 वरियन के नीगर चोरी इल्जाम हेठ विछण तशद शहरियन चोरी के इल्जाम हेठ नीगर के थंबे से वधी तशद जो निशानो बनाया। वाक्य की वीडियो सोशल मीडिया से वायरल। पुलिस जो चवण है तो मुतासिर नीगर के हथ कर वो है तशद कदड़ जवाबदार के कानून के कटड़े में आंदो वो।
0: खिपरो ऐं भरपासे जे मुख़्तलिफ़ ॻोठनि में वधंदड़ बदमनी ख़िलाफ़ ॻोठाणनि जी रैली कुबर शफ़ी मोहम्मद हाले पोटो खाणी ऐं ॿियनि ॻोठनि जे रहवासियुनि रैली कढी। ॻोठाणनि जो चवण हो त ॻोठनि में चोरनि ऋण ॿारे ॾिनो आहे। फुर्जू वारदातूं रोज़ जो मामूल बणियल आहिनि। एस एस पी नोटिस वठी इलाइक़े में अमुन कराए।

0: सकरण वे जो बिटी मोरी लगन जातल कार जे टक्कर में ट्रेजना जिबाट जी फोत आसे में गोट नबी बख्श खास के लिए जा रहा वासी नौजवान वहीद दिलबर इमदाद खास के लिए फोती हुआ। टई नौजवान रोड के किनारे ते सवारी के इंतजार में वेठल हुआ तो एक कार खेन टक्कर हो टिन्नी फोती नौजवान जा लाश घर पहुंचने ते कुराम मची वो। मलीर में नौकरी दियण बहाने फार्म हाउस से घुरायल उनहठ छोकरियों जा मोबाइल फोन खड़ी फरार थे वारो वाक्य में मुलवस एक औरत समेत ब जवाबदार गिरफ्तार। गडा पुलिस फार्म हाउस बुक कराइंदड़ वकास कोऑर्डिनेटर नरगिस के गिरफ्तार करे वरतो। वट मोबाइल फोन खड़ी फरार थल साहिल सलमान अजा ताई गिरफ्तार न थी सको। पुलिस पारा गिरफ्तारी लाइ छापन जो सिलसिलो जारी। गुजरियल ढी शहर के मुख्तलिफ इलाक में उनहठ छोकर के बरिया टाउन में एक्टिविटी के नाले से इवेंट में नौकरी दियण जो आसरो दिनो। इंटरव्यू के बहाने फार्म हाउस आंदो वो। सऊदी अरब के सिक्योरिटी के हेठाओ देखारण की कोशिश जो सख्त जवाब दियण का न किबाइंदी। अगराई या हमले जो जवाब तेज इंतहाई सख्त होंद। सऊदी अरब के यमन के उसी ग्रुप से अफरात तफरी तबाही वो रस्त अख्तियार करण जो इल्ज़ाम। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान शोरिया काउंसिल के सालियाने इजलास के खिताब कंदे रियाज इलाक चिताण घटाने सफारती हल में पंजो सहकार जारी रख। आलमी सतह से तस्लीम थियल यमनी हुकूमत के समूरे मुल्क से अथॉरिटी कायम करण लाइ मदद पिण फराम कंदी। मकादिफा इतिहाद खिते के सिक्योरिटी इस्तेकाम मजबूत बनाने में मददगार साबित थो। खिते के वधण तकरार का महफूज रखने लाइ मकादिफाई मुआदो कयो। पानी के गुजरगान के सियासी या मुआशी दबाव लाइ हथियार तौर इस्तेमाल करण न डनो वो। खैबर पख्तूनख्वा में इमरजेंसी या गवर्नर राय लगाने समेत मुख्तलिफ ऑप्शन से गौर वीचार लाए वजीर आजम शहबाज शरीफ की सदारत हेठ आला सतही इजलास। घरू वजीर मोहसन नकवी अतातार तलाल चौधरी और बेन की शिरकत। मोहसन नकवी वजीर आजम के अमुन अमान सूरत हाल से ब्रीफ किया। जरिए मूजिब के पी के सूरत हाल गवर्नर राज समेत इमरजेंसी वे मामले से भी ख्याल की डे वट कई वही। वजीर आजम सा स्पीकर आया सादिक की धार मुलाकात अहम कानूनी आइनी मामलों से गौर वीचार किया। स्पीकर आया सादिक वजीर आजम शहबाज शरीफ के अपोजिशन से परदे पुठे आलंदर गालियों राबतन पीपी वफद से थियल मुलाकात बाबत भी आगाह किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सदर आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात करण जो इम्कान। मुल्की सियासी सूरत हाल खास तौर से केपी में अमुन अमान वाले सूरत हाल से गौर किया वो। कानून वे वजीर आजम नजीर तार है तो गवर्नर राज एमरजेंसी से बी पो मौकुफ हो अज भी उ हालत उन तरफ वन आइनी घुर्जू पूरी होजन तो वो कानूनी अमल है। हुकूमत पीटीआई बानी की आजादी जो फैसलो नी कर सके। वजीर आजम के सियासी मामलों वे सलाहकार राणा सनाउल्लाह जो चवण है तो एमरजेंसी पसंदीदा अमल न है। गैर आइनी कदम न खड़ने की खातरी कराई वे तो वफाकी हुकूमत एमरजेंसी तरफ न वी। केपी हुकूमत वफाक से चढ़त कंदी तो आइन में हल मौजूद है। लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद लाई आए सोहेल आफरीदी के बानी पार्टी की हिमायत हासिल है। केपी में न एमरजेंसी लगती न ही गवर्नर राज लग। इस्लामाबाद में मीडिया से गलंदे पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौर है तो डायरेक्शन रुगो बानी की हल्दी है। लॉन्ग मार्च जो रूट इस्लामाबाद ही है। केपी में सूबाई हुकूमत की नाकामी से गवर्नर राज लगी सके तो वफाक केपी में गवर्नर राज बाबत मुशावरत कई तो आयन मूजिब मशवरो दिनों वो। केपी में गवर्नर राज आयन का मथाओ न होंद। पीपल्स पार्टी के मरकजी अगवान नेयर हुसैन बुखारी है तो केपी में अमुन अमान की सूरत इंतहाई खराब है। पीटीआई के भी रिलीफ मजामत से न पर अदलियामा मिलो। पीटीआई जो रवैयो सुठो न रो इतजाज नाले से शहर से हमलो कर कबूल जो न पाकिस्तान नूरिस्तान वेट जो इल्ज़ाम पाकिस्तान से मुड़न के अफगान तालिबान जो निसोरो कूड़ करार दई छो। इतलात वे वजारत है तो पाकिस्तान के इल्ज़ाम जो मकसद तालिबान हुकूमत के अंदरूनी जबर अदम इस्तेकाम तां ध्यान हटाना है। अफगान तालिबान ताकत जबर जरिए अफगानिस्तान के अवाम से मुड़ल आन। तालिबान हुकूमत पैं अंदरूनी मसलन की जिम्मेवारी बेन विझी रही है। خطے کے عدم استحکام کے ورچان جو طالبان جو طرز عمل تباہ کر رستے طرف ون رہا ہے. عالمی امن استحکام ترقی میں چین جو انتہائی اہم کردار ہے. اسانجو دلیوں ایک بے سے گڈیل گڈ دھڑکن تھوں. سی پیک پرانی دوستی عوام لائے ودی خوشحال ترقی یافتہ مستقبل کے گجل عزم جو مظہر ہے. ہاں اساں سی پیک کے ایندڑ مرحلے میں داخل تھی رہا ہوں. نئے فیز میں صنعت کاری خاص اقتصادی زونز آئی ٹی اثرات و ذہان.
1: ہم چھم چھم کتابیں لے کے نکلے ہم امی نے کہانا رکنا تم روز روز آگے بڑھتے رہے ہم.

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: Brought to you by Super White Oil Free Beauty Cream मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए Super White Oil Free Beauty Cream के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक
2: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है हाँ तो और क्या सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम अब स्किन की केयर करें कल बारात पे भी जाना है तुम स्ट्रॉबेरी वाली वो भी सुपर वाइट की ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है तुम कौन सी यूज करती हो
3: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है
2: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम
3: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन
2: अच्छा वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है सुपर वाइट

पहर जिंदगी की लहर जी एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

दे वेस दिल का सुना यार सरो पानूर मिया उई वेस चंगेर लिबेस कीता साड़ी दिलड़ी।

हे हुसन दामल सब कोई जाने हुसन खास जहूर जात दा है अहमद नाम सदावे विच अरब सुना जावे जात सिफात दा है कुर्सी अर्श ते हूर मलक वक

पीटीआई जे इम्कानी मार्च के डिसंदे वज़ीर-आज़म शहबाज शरीफ अहम इजलास सराय वरतो। ज़रियन मूजिब इजलास में नायब वज़ीर-आज़म इसहाक डार, घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी ए कानून जो वज़ीर-आज़म नज़ीर तारण इजलास में शिरकत कंदा। इजलास में केपीके जे अमून अमान ए सूबे में एमरजेंसी गवर्नर राज या बेन ऑप्शन्स ते गौर कयो वेंदो।

वज़ीर-ए-आज़म जे सलाहकार राणा सनाउल्लाह चयो आहे त पीटीआई क़यादत मार्च नथी रोके त असां खेन रोकण जो बंदोबस्त करे छॾियो आहे। मार्च खे इस्लामाबाद पहुचण खां अॻु ई रोकियो वेंदो। सोशल मीडिया ते वेठल माण्हू पीटीआई खे डिटेक्ट करे रहिया आहिनि।

पाकिस्तान जे अफगानिस्तान में दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ फिज़ाई कार्रवाई फितना अल खारजीन जा 22 दहशतगर्द मारिजी विया। सुत समा वारे वज़ारत मूजिबि ऑपरेशन गज़बुल हक़ तहत अफ़गानिस्तान में कार्रवाई कई वई। कुझु इतलाउ ते ऑपरेशन में 2 हंधनि खे निशानो बणाए दहशतगर्दनि जे कैंपनि खे तबाह कयो वियो।

हलीमा खान समेत 10 जवाबदारनि ख़िलाफ़ 26 नवंबर केस ॿीहर मुलतवी कयो वियो। रावलपिंडी जे दहशतगर्दी टोड़ अदालत पीटीआई बानी जी भेण हलीमा खान समेत 10 जवाबदारनि 26 नवंबर केस जो फ़ैसिलो ॿीहर मुलतवी करे छॾियो आहे। फ़ैसिलो 22 अक्टूबर ते ॿुधायो वेंदो। सऊदी अरब कंहिं बि हमले या खतरे जो जवाब ॾियण में न घबराईंदो। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान चयो त शूरा काउंसिल जे सालाने इजलास खे ख़िताब कंदे चयो त हुसैन अफरा तफरी तबाही ऐं ख़िते खे धमकाइण जी चूंड कई आहे। सऊदी अरब जमनी हुकूमत जे पूरे मुल्क में अथॉरिटी क़ाइमु करण में मदद करे रहियो आहे। सऊदी अरब सूडान जी वहदत जी हिमायत में जारी रखंदो।

कराची यूनिवर्सिटी रोड ते बीआरटी मनसूबे में शामिल पुल जो तामीर हेठ हिसो किरी पयो वाके सबब एक सिक्योरिटी गार्ड दबजी फोत थी वयो। इंतजामिया जो चवण है त पिलर ते रखियल स्ट्रक्चर किरण सां हादसो पेश आयो।

ऐं उस्ताद मोहम्मद मेहण जे हथ हथियारबंदनि जी फायरिंग में हिकु ॼणो मारिजी वियो। ज़ोरगढ़ थाणे जी हद में मोटरसाइकिल सवार हथियारबंदन अलाह ॾिनो पलाल खे गोलियूं हणी क़त्लु कयो वियो। पुलिस मूजिबि वाकियो पुराणी दुश्मनीअ तां पेश आयो आहे, जांच कई पई वञे।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: Brought to you by Super White Oil Free Beauty Cream मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए Super White Oil Free Beauty Cream के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में A product by Aksa Cosmetics Pakistan
2: अब थोड़ा मी टाइम बनता है हाँ तो और क्या सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम अब स्किन की केयर करें कल बारात पे भी जाना है तुम स्ट्रॉबेरी वाली वो भी सुपर वाइट की ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है तुम कौन सी यूज करती हो
3: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है
4: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम
3: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी And I am using vitamin C cream for best and glowing clean skin.
4: Achha, variants sabke different, lekin choice sabki hai.
5: Super White!
6: Aap sun rahe hain.
7: Aap sun rahe hain.
6: GAFM. GAFM 88 Network. Sindh ki awaaz.

चाहत से फतह करते हैं लोगों के दिलों को, चाहत से फतह करते हैं लोगों के दिलों को। हम ऐसे सिकंदर हैं जो लश्कर नहीं रखते। पर्सनालिटी, खुश मिजाज, अंदाज, मुझे कहते हैं आरजी रुखसार, सिंध की आवाज। कैसे हैं आप? आई होप कि जी जहां जहां भी मौजूद हैं बिल्कुल टिप टॉप सेट, कूल, एक्साइटेड, एकदम स्ट्रांग हेल्थ के साथ मुझे सुन रहे होंगे। जहां जहां भी मौजूद हैं बिल्कुल मेरे साथ साथ मौजूद हैं और मेरा पूरा पूरा साथ देने के लिए पूरी पूरी तैयार हैं पूरे पूरे एक बजे तक, क्योंकि आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, जो कि आप सुनते हैं एवरी मंडे टू थर्सडे। लेकिन अब से आप इसको सुना करेंगे एवरी डे, यानी कि या नो एनी ऑफ, नो एनी छुट्टी। तो अब ये क्यों है, कैसे है, वो आगे चल के आपको बताती हूँ। लेकिन अगर हम प्रोग्राम में सबसे पहले वक्त की बात करते हैं तो जी वक्त हुआ ज्यादा 11:17, जो कि पाकिस्तान का म्यारी वक्त है। तमाम तो लोग ये घड़ियों में बज रहा है, और इसके अलावा वो लोग जो कि इस वक्त हमें ड्राइविंग करते वक्त सुन रहे हैं, चाहे आप बस में है, ट्रक में है, रिक्शे में है, कार में है, बाइक पे है, जिस पर जहाँ भी जा रहे हैं आपको कहेंगे हैव अ सेफ सेफ जर्नी। बट लद्दनवर अपनी गाड़ी और अपने गुस्से की स्पीड को हमेशा अपने कंट्रोल में रखिए और ड्राइव कीजिए बिल्कुल सेफली। बहुत से खुदा खैरियत है मौजूद, और जब अकेले खुदा खैरियत है मतलब वो तमाम थे लोग जो कि जिनका बर्थडे है आज, उनको कहेंगे मनी मनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैव अ बर्थडे टू यू। और वो तमाम तो लोग जो कि बीमार शिमार हैं, उनको कहेंगे गेट वेल सून, कि आप जल्दी से सेहत याब हो जाएं जी। और इसके अलावा अगर आप लाइफ में कुछ अलग, कुछ डिफरेंट, कुछ हटके कर रहे हैं तो विश यू अ वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक, बहुत सारी बेस्ट विशेज आप लोगों के लिए।

sponsored jinjin jinjin duniya shubha shehar shara wadi aur specially specially sponsored by super white ab super white hai kya wo aapko pata chalega aur super white jiske hone se aapki aur meri chit chat jo hai daily basis pe hua karegi ab se yani ki 11 se leke 1 baje tak daily theek hai to ab super white kya hai iske bare mein baat kar lete hain super white ek aisi company hai jo ki aapke liye bana rahi hai बहुत ही अमेजिंग किस्म के प्रोडक्ट्स और ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो कौन से हैं वो इस प्रोग्राम में आपको पता चलेगा आज से लेके तब तक जब तक हम आपको बताना चाहते हैं ठीक है जी तो आज का जो प्रोग्राम है यानी आज से जो प्रोग्राम है वो होगा जी सुपर वाइट की जानिब से और सुपर वाइट जो कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं अब इनकी प्रोडक्ट्स की इतनी कोई तवील लिस्ट है ना जो कि मैं स्टार्ट करूंगी तो आप सुनेंगे और आपको अच्छा लगेगा और जब आपको अच्छा लगेगा तो मुझे ये बात अच्छी लगेगी कि आपको अच्छा लग रहा है ठीक है जी तो सुपर वाइट जो कि बहुत ही खूबसूरत बना देने वाले प्रोडक्ट्स बनाते हैं आपकी खूबसूरती को बढ़ा देने वाले प्रोडक्ट्स बनाते हैं और ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि आपकी स्किन से रिलेटेड तमाम मसले मसाइल को हल कर दे यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आप भी अच्छे लगें आप भी अट्रैक्टिव लगें और कोई मसला पेश आ गया है लाइक आजकल स्किन से रिलेटेड बहुत सारे मसले जिसमें से एक आम मसला जो कि एक्ने का होता है या उससे ज्यादा एक और आम मसले की बात करें तो वो है डाउन कॉम्प्लेक्शन बहुत सारे लोग बहुत सारे कॉम्प्लेक्शन से सेटिस्फाइड नहीं होते और अपने ही कॉम्प्लेक्शन से कभी कभार सेटिस्फाइड नहीं होते वो चाहते हैं कि हमारा कॉम्प्लेक्शन जो इस वक्त है उससे कई मजीद और बेहतर हो जाए और चिट्टा गोरा हो जाए चिट्टे गोरे रंग पे सब मरे चले जाते हैं तो अगर आप भी वही वाले हैं तो बिल्कुल आपको फिक्र करने की कोई बात नहीं क्योंकि आपका जो डाउन कॉम्प्लेक्शन है वो भी फेयर होगा और डाउन कॉम्प्लेक्शन फेयर होने के साथ साथ और भी स्किन से जितने भी मसले मसाए हैं वो सारे खत्म होंगे सुपर वाइट के प्रोडक्ट से ठीक है सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स जो कि बहुत सारे हैं जिनमें अगर मैं आपको बताती हूँ डिटेल्स में नहीं अभी हम थोड़ा सा ऊपर ऊपर से बताते हैं और डिटेल्स में जाएंगे पूरा प्रोग्राम पड़ा है डिटेल्स में जाने को अगर मैं बात करती हूँ सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स तो सुपर वाइट वाले बनाते हैं जी विटामिन सी ब्यूटी क्रीम जो कि आपकी स्किन को बनाती है खूबसूरत और ये किस काम आती है वो भी मैं आपको बताऊंगी और सेम सुपर वाइट विटामिन सी फेस वॉश और इसके साथ साथ सेकंड जो इनका प्रोडक्ट है वो है जी सुपर वाइट स्ट्रॉबेरी ब्यूटी क्रीम और सुपर वाइट स्ट्रॉबेरी ब्राइटनिंग फेस वॉश यानी कि जो क्रीम है उसका फेस वॉश भी है भाई उसी फॉर्मूले में उसी फ्लेवर में तो क्या बात है अच्छा इसके अलावा जी सुपर वाइट एंटी डलनेस फेस वॉश चलिए जी आपने कभी सुना है कि डलनेस के लिए कोई प्रोडक्ट स्पेशली बनाई गई हो और नहीं सुना होगा मेरे ख्याल से तो आप सुन लें और सुपर वाइट वाले एंटी डलनेस फेस वॉश ही बनाते हैं और इनकी ये प्रोडक्ट है जी और इसके अलावा सुपर वाइट राइज कोलेजन ब्यूटी सूप और सुपर वाइट राइज कोलेजन क्रीम भी बनाते हैं अब ये सारी प्रोडक्ट्स किस काम आते हैं वो आपको मैं आगे चल के बताऊंगी इसके अलावा जी सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम भी आती है तमाम तो लोग जिनकी स्किन ऑयल वाली है यानी कि ऑयली है और स्किन टाइप उनकी ऑयली है तो वो यूज कर सकते हैं सुपर वाइट की ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम और साथ में उसका सोप भी आता है इसके अलावा जी सुपर वाइट फेस वॉश ऑयल कंट्रोल ये भी आपको मिल जाता है इसके अलावा सबसे अच्छी अच्छी जो चीज है वो है जी सुपर वाइट ब्यूटी सिरम सुपर वाइट ब्यूटी सिरम जो कि ब्यूटी सिरम है और बूस्टर भी है जो कि आपकी स्किन को बूस्ट करता है ठीक है जी तो ये कुछ इंट्रोडक्शन सुपर वाइट का और सुपर वाइट के साथ ही हम आगे चलेंगे और आगे चल के हम प्रोग्राम का पहला गाना प्ले करेंगे आपको ज्यादा बोर नहीं करेंगे क्योंकि अभी तो आगे चल के हमने बहुत कुछ करना है तो प्रोग्राम में इंक्लूड करने जा रहे हैं जी प्रोग्राम का पहला गाना और प्रोग्राम का पहला गाना हम इंक्लूड करेंगे सो अगर मैं बात करती हूँ अपनी तो मैं आज ऑलमोस्ट पूरे मंथ बाद आई हूँ तो मैंने सोचा क्यों ना आज प्ले किया जाए पिया घर आया और पिया घर आने में जो है ना वो बड़ी देर हो गई और गाना प्ले होने में भी थोड़ी सी देर हो गई
क्योंकि जब आप कुछ अच्छा प्ले कर रहे होते हैं तो उसमें थोड़ी बहुत रुकावटें आ जाती हैं जो YouTube की तरफ से है. हम इन रुकावटों को तोड़ ताड़ के हम आगे चलेंगे और आगे चल के हम आपको बताएंगे प्रोग्राम में हम क्या करने वाले हैं. तो गाना सुनते हैं, इंजॉय करते हैं और आगे चलते हैं. स्टे ट्यून्ड.

0: It's 11:30 AM. This soundtrack is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए. आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो.

0: बेरोनक की स्किन और इन्हीं जे लाइ छा डैमेज ए डल स्किन के कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कोलेजन ब्यूटी क्रीम जेहे में आहिन चावरन जो खूबियो ए कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जल्द के रिस्टोर करे उन जी नमी के ब्लॉक करे ए चावरन जो खूबियो जल्द मा फाइन लाइंस ए झुरन के घट कन ए रिंकल्स के घट करे सिर्फ ट्रिम बिहन में जल्द के बढ़ाए नरम मुलायम ए ब्राइट उन सा गरुगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जे जी हर कतरे सा चेहरे के मिले अधिक खूबसूरती हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कोलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

welcome back once again. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, स्पॉन्सर्ड बाय सुपर वाइट अक्सा कॉस्मेटिक्स और अक्सा कॉस्मेटिक्स सुपर वाइट प्रोडक्ट जो कि आपको दे रहे हैं वो खूबसूरती जो कि पहले कभी किसी और प्रोडक्ट ने ना दी होगी कभी भी. अगर आप भी अपनी स्किन को फ्रेश लुक और बेहतरीन लुक देना चाहते हैं तो सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स आप यूज़ करेंगे और सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स जो कि आपकी स्किन को ग्लो भी देते हैं. अच्छा, ग्लो लाने के लिए बहुत सारे लोग आजकल जो है ग्लो लाना चाहते हैं अपनी स्किन पर, लेकिन ग्लो ला नहीं पाते हैं. अब वो क्यों नहीं ला पाते हैं? क्योंकि वो ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ कर रहे होते जिनसे कि एग्जैक्टली ग्लो आए. ठीक है जी, तो अब आपके स्किन पर फाइनली ग्लो आएगा. और वो कैसे आएगा? सुपर वाइट राइज ब्यूटी क्रीम से, और सुपर वाइट राइज ब्यूटी क्रीम जो कि बहुत ज्यादा अच्छे अज्जा से तैयार करता है. इसमें तमाम तर मौजूदा इंग्रेडिएंट्स जो कि आपकी स्किन को दे रहे हैं बहुत ही कमाल किस्म का ग्लो. और सुपर वाइट राइज कोलेजन फेस वॉश इसके साथ आता है. इसमें कोजिक एसिड भी मौजूद है जो कि आपकी स्किन को नेचुरली ग्लो देती है. सुपर वाइट राइज कोलेजन ब्यूटी क्रीम जिसमें कोजिक एसिड मौजूद है और आपकी स्किन को ग्लो देने के लिए बिल्कुल परफेक्ट और सूटेबल है. लेकिन तब ग्लो आएगा जब आप इसको बाय करेंगे और बाय करके यूज करेंगे. ठीक है जी, तो सुपर वाइट राइज कोलेजन ब्यूटी क्रीम जिसके इस्तेमाल से आपकी स्किन पे ग्लो आता है. और जितनी भी बेजान रूखी स्किन क्यों ना हो, सालों से आपके स्किन पे कोई ग्लो आया ना हो, तो बिल्कुल आएगा. और वो आएगा सुपर वाइट राइज कोलेजन ब्यूटी क्रीम से. इसमें कोलेजन की बहुत सारी खूबियां मौजूद है जी, और कोलेजन जो कि स्किन के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, स्किन को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट भी करता है जी. और कोलेजन एक ऐसी चीज है जो कि स्किन के लिए बहुत ज्यादा मुफीद भी है. तो अगर आप भी अपनी स्किन पे ग्लो लाना चाहते हैं, और आपने भी सुन रखा है लोगों से अपने बारे में कि आपके चेहरे पे कोई 12-13 बजे रहते हैं या बेरोनक सा चेहरा है या बेरोनक सी स्किन है, तो अगर आपको भी ऐसा लगता है या आपकी स्किन भी ऐसी है, तो अब आप यूज करेंगे सुपर वाइट राइज कोलेजन ब्यूटी क्रीम और उसके साथ उसका फेस वॉश भी. ठीक है जी, और इन सबको बूस्ट करने के लिए सुपर वाइट वाले अक्सा कॉस्मेटिक्स वाले जो कि एक सीरम बनाते हैं, इस सीरम को आप इनकी किसी भी क्रीम में यूज कर सकते हैं एज अ बूस्टर. ठीक है जी, अगर आप क्रीम के रिजल्ट को मजीद और एनहेंस करना चाहते हैं तो आप इसमें बूस्टर को ऐड करेंगे. ठीक है जी, बूस्टर या इसको सीरम कह लें, एक ही बात होती है वैसे. तो आप इसको ऐड करेंगे अपनी उस प्रोडक्ट में जो कि आप यूज करें सुपर वाइट वालों की. ठीक है जी, सुपर वाइट के कोई भी प्रोडक्ट या फिर कोई भी क्रीम आप यूज कर रहे हैं उसमें आपने बूस्टर को ऐड करना है जी. और इसके ऐड करने के बाद आपके जो रिजल्ट है ना वो डबल से ट्रिपल हो जाएंगे. और इसका इस्तेमाल आपकी स्किन के जो ओपन पोर्स हैं उनको मिनिमाइज करता है. इसके अलावा खुश्क जल्द को नरम करता है, स्किन को जो है कुदरती हाइड्रेट करता है, झुर्रियों को खत्म करता है. और ये हर किस्म की जो स्किन टाइप है उसके लिए बिल्कुल सूटेबल है. चाहे आपकी स्किन नॉर्मल है, ड्राई है, सेंसिटिव है, ऑयली स्किन है या फिर कॉम्बिनेशन स्किन है, तमाम स्किन टाइप्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट और सूटेबल है. ठीक है जी, तो इस बूस्टर को आप कैसे कैसे यूज कर सकते हैं? सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि राइज सुपर वाइट की राइज कोलेजन ब्यूटी क्रीम में आप इसको ऐड कर सकते हैं. इसके अलावा जितनी भी मैंने सुपर वाइट की प्रोडक्ट्स बताई हैं उसमें आप इसको ऐड कर सकते हैं, और ऐड करने के बाद इससे पूरा पूरा फायदा उठा सकते हैं. अच्छा, साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी कि प्रोग्राम में आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं जी. तीन तरीके कार से आप लोग मुझे सिंपली मैसेज कर सकते हैं. सिंपली मैसेज करने के लिए अपना मोबाइल उठाइए, राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, SKR टाइप कीजिए, SPACG मैसेज टाइप कीजिए, सेंड कीजिए 8881 पे. कमेंट करने के लिए हमारा फेसबुक पेज होगा, दैट इज आई थिंक GFM88, और GFM88 की पेज के ऊपर आपको लाइव ऑडियो स्ट्रीमिंग मिलेगी जी सुपर वाइट स्पॉन्सर की. ठीक है जी, उसके नीचे आप लोग कमेंट्स को ड्रॉप कर सकते हैं, वहां पे आप सुन सकते हैं और साथ में मुझे ज्वाइन भी कर सकते हैं. तो ये है कमाल, और ये कमाल की बात आपको अगर पता चल चुकी है तो डेफिनेटली जिन लोगों ने मुझे ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है, तो भाई लोगों इस ऑडियो स्ट्रीमिंग को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो क्योंकि काफी दिन बाद आई हूँ. बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि मैं आ गई हूँ, तो लोगों को बताओ. ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और अपने पेजेस पे ग्रुप्स में जहाँ जितना मर्जी शेयर करना चाहो उतना करो, लेकिन शेयर जरूर करो.
अच्छा, इसके अलावा आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं. कॉल करने के लिए हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है 03000113488. नंबर सही बताया है मैंने. मुझे लग रहा था कहीं मैं भूल ना गई हूँ. और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आने से पहले यही सोच रही थी कि कहीं मैं कॉलिंग नंबर की जगह में कोई और नंबर ना बता दूँ जो मुझे याद हो, या कोई गलत नंबर ना बता दूँ. नंबर मैंने सही बता दिया है. इस नंबर के ऊपर आप एग्जैक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, यानी कि मुझसे बात कर सकते हैं, प्रोग्राम में इंक्लूड हो सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, और ये कर सकते हैं कि मुझे ज्वाइन कर सकते हैं. अच्छा, हमारा जो सेगमेंट है, सेगमेंट को हम कंटिन्यू भी करेंगे. सुर लगाओ गाना सुनाओ, ठीक है, सुर लगाओ गाना सुनाओ को हम कंटिन्यू करेंगे और बहुत सारी कॉल्स लेंगे. बहुत सारी कॉल्स के साथ साथ हम आपसे पूछेंगे आज तो, मतलब पूछने को बहुत सारी बातें हैं. और वैसे भी हमारे पास ना बातों की कमी है ना गानों की कमी है. और बातें करते करते हमें याद आया है कि हमें चेक करना है जी एक अदद टाइम चेक. तो हम टाइम को चेक करेंगे और टाइम को चेक करके आते हैं जी हम वापस.

0: थैंक यू कामरान. और इसके अलावा जी हम कॉल्स को लेंगे, एंटरटेन करेंगे और फर्स्ट कॉलर ऑन द कॉल हम चेक करेंगे कौन है कहाँ से. हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से?
1: भाई
0: सावन
1: से बात कर रहा
0: हूँ. तो जी अल्हम्दुलिल्लाह, और आप कैसे ठीक ठाक मजे में?
1: अल्हम्दुलिल्लाह
0: आपकी बाजी. ओके जबरदस्त. और मुझे बताएं कि प्रोग्राम सुन रहे हैं?
1: जी जी.
0: प्रोग्राम में क्या तब्दीली आई है?
1: प्रोग्राम में क्या तब्दीली, मैंने अभी ज्वाइन किया है.
0: अभी ज्वाइन किया है, चले मैं आपसे जरूर पूछूंगी, लेकिन कोई अच्छे से गाना सुनाएंगे, लेकिन गाने की दो लाइन सुनानी है, ज्यादा नहीं.
1: जी मंदा जलाशय का सॉन्ग है,
0: सुना दे.
1: तो पड़े में दीदार प्यार दो.
0: वाह वाह वाह, कमाल कमाल. और कुछ कहेंगे?
1: अरे दो थे
0: जल्दी से थैंक यू सो मच. और ये रहा गाना, गुजार है स्पॉन्सर्ड बाय सुपर वाइट अक्सा कॉस्मेटिक्स.

0: अच्छा अवां अच्छा वारन का परेशान आयो पेश आहे आर्ट क्रीम हेयर कलर पंजे पसंदीदा रंग सा पंजो अंदाज बनायो वधिक दिलकश वधिक स्टाइलिश पार्टी हुजे ऑफिस हुजे या की खास मौके जी तैयारी हर लम्हे पंजो बेहतरीन अंदाज जाहिर करियो आर्ट क्रीम हेयर कलर सा पंजे शख्सियत में आयो नओ रंग नओ अंदाज ए नई ताजगी अगे पंजे वेजे स्टोर ता आर्ट क्रीम हेयर कलर हासिल करियो ए पंजे खूबसूरती के जो नओ रंग आर्ट क्रीम हेयर कलर हर रंग में खूबसूरती हर अंदाज में एतमाद जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज

की जो प्रोडक्ट है यानी कि सुपर वाइट की ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम आप लोगों ने लेनी है, और सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम लेने के बाद ना आप लोगों ने इसमें ऐड करना है जी बूस्टर। और बूस्टर क्या है? सीरम है जी सुपर वाइट वालों का, जो कि एक कमाल का सीरम है। अगर आपको एक्ने का इशू रहता है जी, तो आप इसमें इनकी ऑयल फ्री एक्ने क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जिन लोगों को एक्ने का इशू रहता है तो वो लोग ऐड करेंगे सुपर वाइट ऑयल फ्री एक्ने क्रीम, सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम, ठीक है, सुपर वाइट ऑयल फ्री एक्ने क्रीम ऐड करेंगे, ठीक है। एक्ने क्रीम जो है इनकी वो ट्यूब के अंदर आती है और वो आप लोग इसमें ऐड करेंगे। और जो ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम है वो जार में आती है, बड़ी खूबसूरत सी पैकेजिंग में आती है, वो ऐड करेंगे। और फिर ऐड कर देंगे लास्ट में सुपर वाइट वालों का सिरम, और सुपर वाइट ऑयल फ्री सिरम को ऐड करने के बाद आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स मिक्स मिक्स करेंगे। एंड मिक्स करने के बाद आप इसको स्टोर कर लेंगे जी जार के अंदर, और आप इसको डेली बेसिस पे रात के वक्त सोने से पहले अपने फेस को वॉश करेंगे, सबसे पहले सुपर वाइट ऑयल फ्री फेस वॉश से, ठीक है, या फिर ऑयल फ्री सोप से जो कि सुपर वाइट वालों का ही है। और उसको जो है आप लोग फेस को वॉश करने के बाद फिर आप लोग ये सकते हैं कि आप लोग ब्यूटी क्रीम को लगा सकते हैं। ब्यूटी क्रीम को लगाने के बाद आप लोग आराम से सो सकते हैं। सुबह उठने के बाद पहला काम सबसे पहले फिर से ये करेंगे कि सबसे पहले अपने फेस को वॉश करेंगे, फिर कोई दूसरा काम करेंगे, ठीक है। तो ये चीज करेंगे, और ये करने के बाद ना आपको पहले ही 3 दिन में वाजे फर्क जो है नजर आ जाएगा, दिख जाएगा। और जब वाजे फर्क नजर आ जाएगा, दिख जाएगा, तो फिर आप कहेंगे कि वाह क्या कमाल के प्रोडक्ट्स हैं सुपर वाइट वाले, अक्सर कॉस्मेटिक्स वाले, जो कि आप लोगों के लिए बनाते हैं। और सिर्फ आप लोग जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप देखते हैं कि आप कितने ज्यादा खूबसूरत हैं, और पहले ही 3 दिन में आपको वाजे फर्क नजर आना शुरू हो जाते हैं। यानी कि अगर आपका कॉम्प्लेक्शन डाउन है, फेयर नहीं है, तो डाउन कॉम्प्लेक्शन फेयर होना शुरू हो जाता है। अगर आपके फेस के ऊपर एक्ने या फिर एक्ने के पुराने निशान है जो कि अभी तक नहीं गए हैं, और छोटी मोटी एक्ने या फिर थोड़ी बहुत एक्ने या फिर बहुत ज्यादा एक्ने, एक्ने का पूरा खानदान, तो वो सारा का सारा खानदान तबाह करने के लिए आप लोग लगाएंगे क्या सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम प्लस सुपर वाइट ऑयल फ्री एक्ने क्रीम और सुपर वाइट ऑयल फ्री सिरम, जिनको आपस में मिक्स करके आप लोग एक अच्छा सा फार्मूला तैयार कर सकते हैं अपने लिए। और बहुत सारे फार्मूलाज बहुत सारे लोग यूज कर रहे होते हैं, उनके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट आप लोगों ने देख लिए होंगे यूज करके। अब आप लोग ये यूज करके देखेंगे जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। अक्सर कॉस्मेटिक्स वाले जो कि अपने मयार और क्वालिटी पे कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, और ये आपको पता लगेगा प्रोडक्ट्स को यूज करने के बाद। इसी बात पे हम लेंगे आप लोगों की एक अदद लाइव कॉल, और लाइव कॉल लेने के लिए आप लोग नंबर डायल करेंगे, यानी कि करने के लिए आप लोग नंबर डायल करेंगे। यार नंबर है 03000113488। सो नेक्स्ट कॉलर ऑन द कॉल, हेलो हेलो, कोई है? ओके, कोई नहीं है, कॉल ड्रॉप करती है। वेरी बैड। हाले सुल्तान ने हमें ज्वाइन किया है जी फेसबुक के ऊपर। हाले सुल्तान क्या कहती हैं? हाले सुल्तान कहती हैं, हे स्वीट आरजी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वहीद वफाई हमें सुन रहे हैं, आप अच्छी हैं और आपकी वॉइस भी बहुत प्यारी है, माशाल्लाह। ओके, थैंक यू सो मच। इसी बात पे एक कॉल, हेलो, वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं? अलाडिनो खोसो। कैसे अलाडिनो खोसो? कॉल ड्रॉप हो चुकी है, एक और ले लें या फिर गाने की तरफ चलें?

ओके जी, गाने की तरफ मूव कर रहे हैं एंड सॉन्ग इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल. और जब कोई आप सॉन्ग प्ले कर रहे हैं अच्छा सा, पता नहीं क्यों आज मैं अच्छे अच्छे सॉन्ग प्ले कर रही हूँ और वो प्ले हो नहीं रहे हैं. ये कोई टेक्निकल इशू है या ये मेरे आने से ही हुआ है, आई डोंट नो. लेकिन हम गाने को प्ले करेंगे और गाना मेरा हो चुका है गुम और मिल भी चुका है दोबारा से. सो हियर कम्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग बाय बिलाल सईद और इसको हम सुनेंगे, एंजॉय करेंगे, आगे चलेंगे. और मेरे ख्याल से हम डायरेक्टली चले जाएंगे न्यूज ब्रेक और फॉलोड बाय कमर्शियल ब्रेक एंड दोनों के बाद हम वापस आएंगे एंड वापस आके हम प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है स्पॉन्सर्ड बाय सुपर वाइट अक्सा कॉस्मेटिक्स.

ऐं दुनिया जे पहिरें सिंधी सेटेलाइट चैनल केटीएन न्यूज़ जी 24 केटीएन न्यूज़ जे 19 ऐं म्यूज़िक चैनल कशिश जी 21 सालगिरह केटीएन न्यूज़ पारां सिंध वासियुनि खे ड्रामनि ऐं ॿियनि प्रोग्रामनि ज़रिए तफ़रीह पहुचाइण वारो सिलसिलो जारी आहे। कशिश सिंधी म्यूज़िक जे जियापे जो ज़रियो बणियल केटीएन न्यूज़ सिंध जे ॿरंदड़ मसलनि ते हिन वक़्त बि सिंध जो सभ खां वधीक मुअसर आवाज़ बणियल आहे। पाणी जो मसलो हुजे या NFC अमुन अमान जी सूरत हाल हुजे या ॿिया मसला, केटीएन न्यूज़ सिंध वासियुनि जो आवाज़ बणियल।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: Brought to you by Super White Oil Free Beauty Cream मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए Super White Oil Free Beauty Cream के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान
2: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है हाँ तो और क्या सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम अब स्किन की केयर करें कल बारात पे भी जाना है तुम स्ट्रॉबेरी वाली वो भी सुपर वाइट की ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है तुम कौन सी यूज करती हो
3: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है
2: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम
3: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन
2: अच्छा वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है
4: सुपर वाइट
5: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान मेहरान की पहचान GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़

back once again. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है और मुझे कहते हैं आरजी रुखसाए और जिंदगी गुलजार है स्पॉन्सर्ड बाय सुपर वाइट एंड सुपर वाइट ब्यूटी क्रीम एंड सुपर वाइट की बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो कि अक्सा कॉस्मेटिक्स वाले आप लोगों के लिए बनाते हैं. तो जी इसी के साथ हम चलते हैं आगे एंड हम प्ले करने जा रहे हैं एक और सॉन्ग और सॉन्ग के साथ हम चलेंगे आगे और आप लोगों की बहुत सारी लाइव कॉल्स के साथ साथ आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस बहुत सारी बातें बहुत सारे कमेंट्स और क्या बहुत सारे प्रोडक्ट्स सुपर वाइट के

0: आगे भी साथ साथ कॉलर्स को भी इंटरटेन करेंगे. एंड हम क्या कर रहे थे, हम ये कर रहे थे कि हम सोच रहे थे कि हम एक और गाना प्ले करते हैं. तो सोचते नहीं है, प्ले करते हैं. और थोड़ा सा अगर हम पीछे जाते हैं, सो मेरे जहन में एक गाना आ रहा था और वो मेरे सामने भी आया और मैंने प्ले कर दिया है जी. एंड दैट इज खानी ओएसटी, बहुत सारे लोगों का फेवरेट ओएसटी, नॉस्टैल्जिक सॉन्ग. और साथ साथ कॉल्स लेते हैं जी. सो नेक्स्ट कॉलर ऑन द कॉल, हेलो. आगे जी बच्चे रो रहे हैं और मेरे ख्याल से उनको पता नहीं चल रहा है कि कॉल लग गई. जिनकी कॉल लग गई असल में उनके बच्चे रोना शुरू हो गए. खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट कॉलर. हेलो
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? जेकपा बास से बात कर रहे हैं, पहली दफा कॉल कर रहे हैं.
1: सोना खान मस्तोई.
0: अच्छा सोना खान मस्तोई भाई, सोना खान मस्तोई कैसे, ठीक ठाक?
1: आपकी तबीयत कैसी है?
0: जी मैं बहुत अच्छी हूँ. मुझे बताइए गा के प्रोग्राम सुन रहे हैं?
1: हाँ बिल्कुल बेना, मैंने अभी जो है आपका प्रोग्राम सुना था, बहुत सारी टाइप कॉल हमने अभी हमने साथ किया.
0: ओके तो मुझे बताएं कि प्रोग्राम में क्या तब्दीली आई है?
1: बस तब्दीली देना, मैंने आज ये स्टार्ट किया है आपका और फिर क्लास हम प्रोग्राम सुनेंगे. आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है, हर प्रोग्राम से जो है ना आपका सुपर होता है प्रोग्राम देना.
0: चले जबरदस्त, थैंक यू. और कुछ कहना चाहेंगे?
1: बस और यही कहना चाहूंगा कि आप प्रोडक्ट का नाम जो है ना बार बार लेंगे, हमारे जेन में आ जाएगा तो हम खरीद करके अपने चेहरे पे इस्तेमाल कर लेंगे. बिना आपका प्रोग्राम ये हमने पहली बार सुना है, बाकी वैसे प्रोग्राम का नाम तो वो ये जिंदगी गुलजार.
0: बिल्कुल ओके, थैंक यू सो मच. अपना बहुत सारा ख्याल रखिए सोना खान मस्तोई भाई, हाफिज. एंड गाना प्ले किया था

0: थी साथ साथ, और मुझे नहीं पता था कि ये डायलॉग्स के साथ वाला ओएसटी है. खैर हम इसको चलने देते हैं और साथ में कॉल्स लेते हैं. जी 03000113488 एंड नेक्स्ट कॉलर. हेलो
1: अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम. कौन कहाँ से?
1: जीएम बलोच कर रहा हूँ.
0: जीएम बलोच भाई कैसे? ठीक ठाक. प्रोग्राम सुन रहे हैं?
1: अल्लाह का शुक्र है सब ठीक ठाक. आपने एक साथ लगा दिया प्रोग्राम को ज्वाइन करने.
0: सॉरी
1: आपका जो ये लॉन्ग जो
0: मैं बिल्कुल नहीं समझ पाई और कॉल भी ड्रॉप हो गई आपकी. जी बलोच भाई मेरे ख्याल से कोई शिकायत लेकर आए थे. अच्छा मैं एक महीने बाद आई हूँ तब भी आप लोगों की शिकायतें खत्म नहीं हुई.

गाना सुनते हैं जी. एंड नेक्स्ट सॉन्ग इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल, जो कि मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट है जी, और मुझे नहीं पता ये आप लोगों का फेवरेट है या नहीं, और मेरे ख्याल से होगा. ब्यूटीफुल सॉन्ग बाय आतिफ असलम. अच्छा, बाय द वे आतिफ असलम का एक न्यू एल्बम भी रिलीज हुआ है, उसके कुछ गाने जो कि मैंने अपने शोज में प्ले किए थे और कुछ नहीं किए थे. क्या ख्याल है, वो भी करें हम, वो भी करेंगे. थोड़ा सा सबर, थोड़ा सा हौसला और सुपर वाइज. सुपर वाइट. अच्छा, सुपर वाइट से मुझे एक वो वर्ड याद आता है, वो तब यूज होता है कि जब आपको कोई चीज या कुछ भी बहुत ज्यादा अच्छा, बहुत ही ज्यादा अच्छा, मतलब के इतना ज्यादा अच्छा जिसको आप लफ्जों में बयान ना कर पाए, तो वो कुछ इस तरह से था कि सुपर कैलिफ्रेजिलिस्टिक एक्सपी एलिडियस. तो ये कुछ है जो कि कहा जाता है. के दिखाई इसको कहना आता है, कौन कहेगा कॉल पे आके. मेरे ख्याल से सर दर्द कह देगी, सर दर्द कर लेगी, वो ही कर सकती है.

मोहम्मद ब्रोही ने हमें कमेंट किया है, कहते हैं रुखसार वाइट ब्यूटी क्रीम नहीं सुपर वाइट ब्यूटी क्रीम. ठीक है जी, सुपर वाइट, सुपर वाइट की पेट्रोलियम जेली भी आती है. अब देखिए सर्दियां आ रही हैं, सर्दियों में आप इसको भी यूज कर सकते हैं, पेट्रोलियम जेली, जो कि अब से हर घर की, हर एक इंसान की बहुत अच्छी अच्छी नहीं खैर बहुत शदीद जरूरत बनेगी. मतलब कि जिसको कहते हैं कि इसकी जरूरत आपको जो है ना आने वाले मौसम में बहुत बहुत ज्यादा पड़ने वाली है. ठीक है जी, तो सुपर वाइट की जेली जो कि डिफरेंट फ्लेवर्स के अंदर आती है जी, इसको भी आप ले सकते हैं. पेट्रोलियम जेली जो कि आपको आप इसको यूज कर सकते हैं, आप इसको बहुत सारे तरीकों से यूज कर सकते हैं. मतलब कि आप इसको अपने नेल्स पे लगा सकते हैं अगर आपके नेल्स ड्राई होते हैं, आप इसको हाथ और पांव पे भी लगा सकते हैं, आप अपनी ड्राई स्किन पे लगा सकते हैं, आप इसको चीक्स पे लगा सकते हैं, आप इसको लैशेस में भी लगा सकते हैं. ठीक है, आप इसको लिप्स पे लगा सकते हैं, तो बहुत सारी चीजों में काम आती है पेट्रोलियम जेली. आप इससे टिंट्स बना सकते हैं, आप इससे लिपस्टिक्स बना सकते हैं, इसके अलावा क्या कर सकते हैं आप इससे और मजीद ब्लशेस बना सकते हैं. हाँ, तो लड़कियों के ज्यादा काम आने वाली सर्दियों में. अच्छा, वो लोग भी फिर इसको यूज कर रहे होते हैं जिनकी ऑयली स्किन होती है, और इसको यूज करने का अपना ही एक अलग मजा होता है. पेट्रोलियम जेली कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, खासतौर पर सर्दियों के मौसम में. अगर आप भी सर्दियों के मौसम में अब कोई पेट्रोलियम जेली लेने का सोच रहे हैं, तो सुपर वाइट की पेट्रोलियम जेली जो कि बहुत ज्यादा अच्छी है, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा अच्छी है, आप जब जब इसको लगाएंगे आपका दिल खुश हो जाएगा कि क्या खुशबू लगाई है. ठीक है जी, खुशबू और क्वालिटी सब कुछ बहुत अच्छा है. तो सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स यूज करते जाएं और मुझे बताते जाएं.

ओके जी, तो सुपर वाइफ के और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताना है और आज और सुपर वाइट की जो स्ट्रॉबेरी क्रीम है, स्ट्रॉबेरी ब्यूटी क्रीम भी आती है जी, और ये जो सुपर वाइट की स्ट्रॉबेरी ब्यूटी क्रीम है ये है एक अलग कोरियन फॉर्मूला। तो वो लोग जो कि कोरियन स्किन के दीवाने हैं, कोरियन स्किन बनाना चाहते हैं अपनी या फिर कोरियन प्रोडक्ट्स को बाय कर नहीं सकते, अफोर्ड कर नहीं सकते, कोरियन फॉर्मूला तो अफोर्ड कर ही सकते हैं और सुपर वाइट वाले अब ये चीज जो है आपकी अप्रोच में लेकर आते हैं, यानी कि कोरियन फॉर्मूला आपकी अप्रोच में लेकर आते हैं और सुपर वाइट कोरियन फॉर्मूला स्ट्रॉबेरी ब्यूटी क्रीम जो कि आपको कोरियन स्किन देती है जी, और इसके इस्तेमाल से आपकी स्किन कोरियन स्किन बन जाएगी जी। इस्तेमाल से विजिबल रिजल्ट्स आएंगे जी, तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन जो है ना कोरियन स्किन बनने की तरफ जा रही है। और सुपर वाइट स्ट्रॉबेरी ब्यूटी क्रीम जिसका फेस वॉश भी आता है जी, सुपर वाइट स्ट्रॉबेरी ब्राइटनिंग फेस वॉश, तो इसको भी यूज किया जा सकता है इसके साथ। और करना है अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन जल्दी से कोरियन स्किन बन जाए तो अपने रिजल्ट्स को मजीद और इनहेंस करेंगे और सुपर वाइट का कोरियन फार्मूला स्ट्रॉबेरी ब्राइटनिंग फेस वॉश अपनी स्किन केयर रूटीन में ऐड करेंगे तो कि आपकी स्किन को ब्राइटन अप करेगा, डीप क्लींजिंग देगा, स्किन को ग्लो देगा। और इसमें मौजूद है माइक्रो बीट्स जो ऑल स्किन टाइप्स के लिए बिल्कुल सेफ और हेल्दी है, तो इसको यूज करें और यूज करने के बाद आपको पता चलेगा कि इसका जो टेक्सचर है या उसकी क्वालिटी है या जिसकी पैकेजिंग है इतनी कमाल की है, तो उसको यूज करने से आपको मिलती है जी कोरियन स्किन। तो कोरियन स्किन को आप लोगों ने करना है क्या करना है, अपनी स्किन को कोरियन स्किन बनाना है। हाँ ये कह रही थी मैं। अच्छा साथ साथ 03000113488 के ऊपर आप लोगों की कॉल्स को मैं रिसीव कर रही हूँ और बहुत सारे कमेंट हैं आप लोगों के, बहुत सारे मैसेजेस हैं आप लोगों के, और बहुत सारे मैसेजेस के साथ साथ कमेंट्स को भी हम इंक्लूड करेंगे जी। सो मैसेजेस हमें करते हैं बहुत सारे लोगों ने, सो हम मैसेजेस को इंक्लूड करते जाते हैं जी। महबूब अली मोरो सिटी से हमें सुन रहे हैं और कहते हैं कि सिस्टर अस्सलामुअलैकुम, आप हमेशा गुलाब की फूलों की तरह मुस्कुराती रहो, आपका प्रोग्राम जिंदगी गुलजार है। अच्छा आपने मेरा नाम गलत लिखा है, मैं नाराज आपसे, ठीक है। तो वेरी बैड, वैसे मुझे पता है कि आप प्रोग्राम सुनते हैं और सुनते रहते हैं, तो नाम सही लिखा करें।

और भी बहुत सारे मैसेजेस हैं आप लोगों के जिनको हम इंक्लूड करते जाएंगे जी. और गुड आफ्टरनून, फर्स्ट टाइम वेलकम टू यू रिस्पेक्टेबल. माय कॉल इज डिस्कनेक्टेड, योर प्रोग्राम इज सुपर वाइट राइज बाय अक्सर कॉस्मेटिक्स परचेजिंग जी एम बलोच मीरपुर खास. अच्छा जी, परचेज करेंगे, ठीक है जी. थैंक यू कि आप परचेज करेंगे, और थैंक यू फिर आप परचेज करने के बाद मेरा करेंगे कि आपने पक्ष मुझे बताए और मैंने लिए और फिर जब मैंने इस्तेमाल किए तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, तो ये आप कह रहे होंगे.

अच्छा साथ साथ हम कमेंट्स की तरफ मूव करते हैं जी, और कमेंट्स हमें हाले सुल्तान ने बहुत सारे कर दिए, किंजा रानी हमें सुन रही है, मजा नहीं आ रहा, मजे करवाते हैं आपको, ठहर जाए आप ठीक है। अच्छा हाले सुल्तान नाइस है सॉन्ग स्वीट आरजे, वाह सॉन्ग बहुत प्यारा सॉन्ग प्ले किया, कौन सा वाला, अरे वाह कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर खुशबू अच्छी है तो मैं भी परफ्यूम नहीं यूज करूंगा, डन हो गया, चले जबरदस्त जी जबरदस्त, फिर तो पेट्रोलियम जली की बात कर रहे हैं ना, इसकी बात कर रहे हैं। अब्दुल गफ्फार रान हमें सुन रहे हैं जी, थैंक यू सो मच, ये हमें सुन रहे हैं मेलसी से हमें सुन रहे हैं जी, थैंक यू। गाना खत्म नहीं हो रहा हमारा, और प्ले कर रही हूँ जी, एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल बाय अ ब्रावल हक, एंड दिस सॉन्ग इज वेरी ब्यूटीफुल, इसको सुनेंगे एंजॉय करेंगे और आगे चलेंगे, कॉल्स भी लेंगे, आई कैन लव यू मोर देन एनीबॉडी एंड आई मीन इट।

0: Sakhar, FM 88.
1: Sakhar ki awaaz.
2: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहां वहां। जी एफ एम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: hit.
1: सुनाई आ जाए. अच्छा अच्छा, सुपर सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, और मेरा सवाल करने का मकसद ये है कि आप लोग मुझे बताएं कि हाँ ये तब्दीली आई है.
2: तब्दीली यही आई है कि महीने के बाद आए
1: ये भी एक तब्दीली है. चले अब दस और कुछ कहना चाहेंगे.
2: गाने का प्रोग्राम खत्म हो गया, सेगमेंट खत्म हो गया.
1: हाँ, गाने का सेगमेंट खत्म हो गया अनफॉर्चुनेटली. कोई बात नहीं, कल कल दोबारा आएगा, कल लग जाएगी.
2: कल तो फ्राइडे है ना.
1: हाँ, फ्राइडे को भी आएंगे ना. अब छुट्टी थोड़ी है मेरी, मतलब के ऑफ थोड़ी है वीक में, अब तो पूरा वीक आना है मुझे.
2: अच्छा, मतलब एक महीने की पूरी जो है ना वो पसंद निकल जाएगी.
1: हाँ, ये बात आपने सही कही कि वो एक महीने वाली कसर निकल जाएगी.
2: तो अभी कितने बजे तक प्रोग्राम चलेगा आपका?
1: ये वही 11 से 1 बजे तक.
2: अच्छा अच्छा,
1: ठीक हो गया.
2: मैं डेली, यकीन माने डेली में कॉल करता था, डेली रोज.
1: चले अब आप डेली किया करेंगे और डेली आपकी कॉल लगा करेगी इंशाल्लाह. और ये सारी की सारी क्वेरीज इनकी क्लियर हो चुकी है, और जिन लोगों की सेम क्वेरीज थी उनकी भी हो चुकी होंगी.

किशोर कमेंट कर रहे हैं, नाम नहीं लिया कमेंट में, वाकई मैंने नहीं लिया, अगर नहीं लिया आप ले लेते हो स्मार्ट किशोर, आपका नाम लिया मैं क्यों नहीं लूंगी, अगर नहीं लिया, अगर हो सकता है नहीं लिया, वैसे मैं भूल जाती हूँ, मैं अपनी कई बात भूल जाती हूँ, लेकिन अगर नहीं लिया तो आप ले लेते हो स्मार्ट किशोर के मैंने कॉमेंट रीड किए थे, कंग्रेचुलेशन इन्होंने मुझे कहा था। अब्दुल जी कैसर हमें सुन रहे हैं, जी कहते हैं वेलकम वेलकम टू यू एज वेल। इसके अलावा जी गाना हमारा खत्म हो रहा है, ये कुछ स्लो हो गया था ये वाला सॉन्ग, और मैं सोच रही हूँ कि अब कुछ अच्छा सा हम प्ले करें, एंड नेक्स्ट सॉन्ग जो कि हम प्ले करेंगे और टाइम भी मेरे पास लिमिटेड है। आप सुन रहे हैं जिंदगी गुजार है, स्पॉन्सर्ड बाय सुपर वाइट अक्सा कॉस्मेटिक्स, और सुपर वाइट एंड अक्सा कॉस्मेटिक्स जो कि बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं आप लोगों के लिए।

0: मुझसे इतना दूर है, अब कर लिया कबूल है, अंदर से तू भी जानती तेरे तेरे मन को है, पर तू जाने में मजबूर हूँ, मैं तेरा मशकूर हूँ, तू समझ मुझे अब भी, तू जैसे कोई नूर है।
1: इसके अलावा जो सुपर वाइट की टर्मेरिक ब्यूटी क्रीम भी आती है, सुपर वाइट की टर्मेरिक ब्यूटी क्रीम जो कि आपकी स्किन को बूस्ट करती है, आपकी स्किन को रेडिएंट बनाती है जी, और आपकी स्किन को नेचुरली ग्लो देती है, ऑल स्किन टाइप को सूट करेगी, 3 दिन में विजिबल रिजल्ट्स देगी। अगर 3 दिन में अच्छा खासा रिजल्ट हासिल करना चाहते हैं तो सुपर वाइट टर्मेरिक ब्यूटी क्रीम के साथ सुपर वाइट एंटी डलनेस टर्मेरिक फेस वॉश जरूर यूज करें, अपनी स्किन को बूस्ट करें।

केपीके में गवर्नर राज लागू कजे या इमरजेंसी वजीर आजम जे काबिना जे अहम मेंबर सा मुशावरत सूरत हाल ते सदर के भी एतमाद में वठण जो फैसलो केपीके जी सूरत हाल ते वजीर आजम जी सदारत हेठ अहम इजलास थियो घरू वजीर मोहसिन नकवी अमन अमान जी सूरत हाल एम पी टी आई जे लॉन्ग मार्च के मुंह ॾियण लाइ तयारियुनि बाबति आगाह कयो कानून वारे वज़ीर सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ केपीके में गवर्नर राज एमरजेंसी बाबति कानूनी ऐं आइनी सूरत हाल खां आगाह कयो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ केपीके जी सूरत हाल ते सदर आसिफ अली ज़रदारी ऐं ॿियनि स्टेक होल्डर्स खे इतमाद में वठण जो फ़ैसिलो कयो वज़ीर आज़म जे मामले सदर ऐं ॿिए सियासत क़यादत सां जल्द मुलाक़ात जा इम्कान पी टी आई क़यादत मार्च नथी रोके त असांखे रोकण जो बंदोबस्तु करे छॾियो आहे मार्च खे इस्लामाबाद पहुचण खां अॻु ई रोकियो वेंदो वज़ीर आज़म जे सियासी मामलनि बाबति सलाहकार राणा सनाउला चयो आहे त सोशल मीडिया ते वेठल माण्हू पी टी आई खे डिक्टेट करे रहिया आहिनि ग़लतियुनि मां न सिखंदासीं त कॾहिं बि तरक़ी न करे सघंदासीं अस्करी कामयाबियुनि सां गॾु मुआशी कामयाबियुनि में बि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साराह जोॻो रहियो आहे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ चयो आहे त फील्ड मार्शल जे ज़िक्र खां सवाइ समूरियूं कामयाबियूं अणपूरियूं आहिनि आई एम एफ जे सरबराह चयो त हीउ नओं पाकिस्तान आहे बजट में ॾिनल मराइतनि जा नतीजा साम्हूं अची रहिया आहिनि पूरी दुनिया में पाकिस्तान हिकु मिसाल क़ाइमु कयो आहे इनशाला ईंदड़ वक़्त में पाकिस्तान दुनिया जे मज़बूत मैशियत हूंदो वरी वज़ीर सैयद मुरादरी शाह जी तारत हेठि काबिना जो इजलास सरकारी ज़मीननि जे अलाटमेंट ऐं इस्तेमाल बाबति नओं कानून आणण जो फ़ैसिलो कॉलोनाइज़ेशन ऐंड डिस्पोज़ल ऑफ गवर्नमेंट लैंडर एक्ट 1912 जी जाइ ते सिंध गवर्नमेंट लैंडर मैनेजमेंट एक्ट 2026 जो मसौदो पेश कयो मुराद शाह जी काबिना मेंबर्स ते नए कानून ते 10 ॾींहं अंदरि तजवीज़ूं ॾियण जी हिदायत सैयद मुरादरी शाह चयो त सिंध गवर्नमेंट लैंडर मैनेजमेंट एक्ट 2026 बाबति फ़ैसिलो काबिना जे ईंदड़ इजलास में कयो वेंदो

पाकिस्तान जे अफगानिस्तान में दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ फिज़ाई कार्रवाई 22 ख़ारजी दहशतगर्द मारिजी विया। सुध समा वारी वज़ारत मूजिबि ऑपरेशन गज़बुल हक़ तहत अफगानिस्तान में कार्रवाई कई वई, ॿिनि हंधनि खे निशानो बणाए दहशतगर्दनि जे कैंपनि खे तबाह कयो वियो। सिक्योरिटी फोर्सिस जो केपीके ऐं बलोचिस्तान में ऑपरेशन, केतिरा ई दहशतगर्द मारिजी विया। बलोचिस्तान जे ज़िले कच्छे में फोर्सिस जी कार्रवाई, 6 दहशतगर्द मारिजी विया। सिक्योरिटी फोर्सिस मूजिबि दहशतगर्दनि खे क्वार कॉपरस ज़रिए निशानो बणायो वियो। फोर्सिस जे उत्तर वज़ीरिस्तान में बि कार्रवाई कई, केतिरा ई दहशतगर्द मारिजी विया। अलीमा ख़ान समेत 10 जवाबदारनि ख़िलाफ़ 26 नवंबर ते केस वीहर मुलतवी कयो वियो आहे। रावलपिंडी जे दहशतगर्दी टोड़ अदालत पीटीआई बानी जी भेण अलीमा ख़ान समेत 10 जवाबदारनि ख़िलाफ़ 26 नवंबर केस जो फ़ैसिलो वीहर मुलतवी कयो। फ़ैसिलो 22 अक्टूबर ते ॿुधायो वेंदो। सऊदी अरब कंहिं बि हमले या ख़तरे जो जवाब ॾियण में न किबाईंदो। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान शोरा काउंसिल जे सालियाने इजलास खे ख़िताब कंदे चयो आहे त हुसैन अफरा तफरी तबाही ऐं ख़िते खे धमकाइण जी चूंड कई आहे। सऊदी अरब सूडान जी वहादत जी हिमायत बि जारी रखंदो। गुडू में पंजाब पुलिस जे मुबैना मुक़ाबले में हिकु ॼणो मारिजी वियो। पंजाब पुलिस हथां मुक़ाबले में मारिजी वियण जी सुञाणप न थी सघी। लाश अस्पताल मुंतकिल। पुलिस जो चवणु आहे त सिंध पंजाब दंग वटि पुलिस मुक़ाबले में हिकु ॼणो मारिजी वियो। ॿ जवाबदार फरार थी विया आहिनि। मेहड़ में जतोई बिरादरी जो नौजवान ते हमले ख़िलाफ़ एहतजाज। मुज़ाहिरीन चयो आहे त नौजवान नेमतुल्ला जतोई ते हमलो करे ज़ख़्मी कयो वियो आहे। जवाबदार गिरफ़्तार कया वञनि। चक में असगर वात ऐं अणॼातल माण्हुनि पारां फसुल जे भेल करण ख़िलाफ़ मुतासिर आबादगारनि जो एहतजाज। मुख़्तलिफ़ बिरादरी जे माण्हुनि एहतजाज कयो त जवाबदार फसुल वारी अनाज खणी वञनि था। ॻोठनि जे चङनि मुड़सनि वटि दाह खणी वियासीं, पर उन्हनि बि असां ते तशदुद कयो। जवाबदारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई करे वधीक नुक़सान खां बचायो वञे। नवाबशाह में औरत जो धीअ ते सहुरनि जे मुबैना ज़ुल्मनि ख़िलाफ़ एहतजाज। गोट फ़क़ीर जे खूह जे रवासण चयो त धीअ समीना खे संदसि मुड़ुसु सहुरे ऐं ॾेरनि कारे इल्ज़ाम मड़ी तशदुद कयो आहे। धीअ सां ज़ुल्म कंदड़ संदसि मुड़ुसु सहुरे ऐं ॿियनि जवाबदारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वञे।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
1: Brought to you by Super White Oil Free Beauty Cream मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए Super White Oil Free Beauty Cream के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में A product by अक्सा Cosmetics पाकिस्तान
2: Finally, अब थोड़ा मी टाइम बनता है हाँ तो और क्या सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम अब स्किन की केयर करें कल बारात पे भी जाना है तुम स्ट्रॉबेरी वाली वो भी सुपर वाइट की ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है तुम कौन सी यूज करती हो
3: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है
4: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम
3: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन
2: अच्छा वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है
5: सुपर

खूबसूरती जो है हमसे जरा रूठ चुकी होती है, हमारे चेहरे पर जब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ चुके होते हैं, तो जब ये चीजें हमें फेस करनी पड़ जाती है, तब हमारा कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाता है और हमें समझ नहीं आता कि भाई अब हमने क्या करना है। क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं, तो वो अलग अलग ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो जब ये तमाम चीजें आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है ना, तो उन लोगों से पूछे जो लोग इन चीजों को सफर कर रहे हैं। क्योंकि भाई ये जब चीजें आपकी जिंदगी में आ जाती है ना, तो बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ जाता है। अगर आप इन तमाम चीजों से बचना चाहते हैं, अपनी खूबसूरती का ख्याल रखना चाहते हैं, खूबसूरत रहना चाहते हैं और खूबसूरती को मेंटेन करना चाहते हैं, तो वो कैसे सब पॉसिबल है? बिल्कुल जनाब, डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट से पॉसिबल है। और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट का जिक्र इसलिए किया जाता है क्योंकि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट सबसे बेहतरीन बात, सबसे आला बात कि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट मेडिकेटेड फार्मूला है। तो आप लोगों को बताऊंगी इस तरह के बारे में जो ना सिर्फ आपकी खूबसूरती का ख्याल रखेंगे बल्कि आपके चेहरे के लिए फायदेमंद भी साबित हो सकते हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश आप इस्तेमाल करके अपने खूबसूरत चेहरे को मजीद खूबसूरत और ब्यूटीफुल बनाएंगे। और यहाँ पर मर्द हजरात खवातीन सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और जनाब बहुत ज्यादा वाली बातें हैं जो पूरे प्रोग्राम में आप लोगों को बताती रहूंगी, लेकिन साथ साथ कहते ना कि इतनी भी जल्दी क्या है, अभी तो हमने स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद है जो की अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं। बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए, यानी कि फ्री होकर हमारे इंतजार कर रही थी। ऐसे बहुत सारी आंटियां, अम्मियाएं, खालाएं, बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी, यानी कि लंच बनाने के दौरान सुबह अपने काम भी कीजिए, हमें भी सुनिए। आपको कहेंगे मेरी वाली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुने लिए हैं, तो जनाब आप जबरदस्त गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए, क्योंकि आपकी बोरिंग लाइफ में भरेगी चटपटा मसाला। बिकॉज आली रे आली सदर आली बोस आपके होंठों पर 440 उल्की स्माइल लाने के लिए। तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 उल्की स्माइल लाते हैं। और यहाँ पर ऐसा करते हैं, आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं। आगे से प्रोग्राम करेंगे जी एक बहुत ही ब्यूटीफुल से कसीदे के साथ, जो कि मैडम आबदा जी की आवाज में होने वाला है। तो कसीदा सुनते ही उसके बाद जैसे ही वापस आप लोगों के पास मुखातिब होते हैं, तो बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में क्या होने वाला है। तो आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। लगाइए और खूबसूरत हो जाइए।

خوبصورتی جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم ان میں موجود وائٹامن ای بیڈز ائی جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ائی چمکدار صرف بن دیہن میں ڈارک سپاٹس کے کرے ختم ائی دیے قدرتی اصلی گلو ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر ڈی جو شو ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان क्या बात है बहुत ही खूबसूरत सा कसीदा हमने यहाँ पर सुना और प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप क्यों इस्तेमाल करेंगे ये भी आप लोगों को बताया जाएगा इसी के साथ साथ आप जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद है सभी को वेलकम इन खुशामदीद कहते हैं और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहराब और मातली नूरियाबाद और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो में आपके साथ मौजूद हूँ और आज के प्रोग्राम में टॉपिक के हवाले से बात करें तो आज के प्रोग्राम का जो टॉपिक होने वाला है वो क्या होने वाला है वो सबसे पहले बता देते हैं आज के प्रोग्राम में अगर टॉपिक बता दिया जाए तो टॉपिक कुछ इस तरह से होने वाला है कि आप मुझे बताइए कि जिंदगी में सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ आपका। हाँ जी, हम जिंदगी में वैसे तो बहुत सारी चीजों के बारे में बात करे होते हैं लेकिन नुकसान के बारे में थोड़े कम लोग होते हैं जो बात करते हैं और उनकी जिंदगी में सबसे बड़ा नुकसान जो होता है वो क्या होता है वो आप मुझे बताइए कि आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ। और अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं शामिल प्रोग्राम होना चाहते हैं तो क्या तरीके कार फॉलो करेंगे, अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK, सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और इसे सेंड कीजिए 2821 पर। और अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनने वाले हैं, फेसबुक पर ज्वाइन करने वाले हैं तो जीए लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है जनाब। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको आराम से हमारा पेज मिल जाएगा। जल्दी से हमारे पेज पर आइए, वहाँ पर आपको हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट मिल जाएगी जिसे आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। तो पोस्ट को लाइक किया करें और शेयर किया करें, ये दोनों काम लाजमी किया करें। सिर्फ कमेंट करना जरूरी नहीं होता बल्कि पोस्ट को लाइक और शेयर करना भी जरूरी होता है। तो पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए, कंजूसियां मत किया करें। ओके, तो लाइक और शेयर करने से ये होता है कि हमारी पोस्ट को जो है ना वो जरा सा बूस्ट मिल जाता है और उससे ये होता है कि हमारी पोस्ट बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाती है। तो बहुत सारे लोगों को अगर आप बताना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों को भी पता होना चाहिए जनाब कि हाँ जी, डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर भी अवेलेबल है और आप कहाँ से जाकर परचेज कर सकते हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश लगाते रहिए और खूबसूरत होते रहिए। इसी के साथ साथ सवाल का जवाब देते जाइए कि जिंदगी में सबसे बड़ा नुकसान आपका क्या हुआ। और इसी के साथ साथ अगर आप भी अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश को अवेलेबल कराना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी से जो है ना नंबर आपको बताने लगी हूँ और नंबर के ऊपर रब्ता कीजिएगा ताकि आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश को अवेलेबल करा दिया जाए। तो सबसे पहला नंबर है जनाब 0332738439। बुढ़ी 332 है 73 84 309। यो नंबर आ है 03125025907। बुढ़ी 312 50 570 970। ये वही नंबर साइन जी की तुम डायल करें पांच करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम के एंड डी स्किन फेस वॉश के अवेलेबल कराईंदा। सब का पेरी गाल तुम्हारे करीबी जनरल स्टोर से प्रोडक्ट्स मिलन लाजमी आए मिलंदा तरीन तुम्हें आसानी थी तुम बस वेंदा परचेज करींदा। अगर नथा मिलंदा तो तुम थोड़ा परेशान थी बाबा सा कथा वठूँ हाँ असेंगे शहर वनो पवो ही करो पवो हो करो पवो। सो अगर तुम पाँच करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराए छींदा तो तुम आसानी थी वेंदी बस तुम वेंदा परचेज करींदा। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश लगाईंदा रहो सुना थींदा रहो। अच्छा, हमारे साथ यहाँ पर आपके मैसेजेस, तो जरा मैसेजेस को भी पढ़ लेते क्योंकि आपके कमेंट्स बना ऊपर चले जाएंगे। और किंजा हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम, केरी गुड आफ्टरनून, आप ही आप कैसी हैं? शो डेली सुनती हूँ अम्मी के साथ, बहुत शुक्रिया जी। आप वही है ना जो कहती हैं कि भाई फैमिली के साथ शो सुना जाता है और हाँ ये वो ये वैसे हमारा प्रोग्राम फैमिली कंटेंट है तो इस तरह के मैसेजेस से गुरेज किया करें। और फहीम शेख हमारे साथ मौजूद है, कहते हैं कि हर थरवासी जा नेण भी थर जेड़ा मौसम बरसाती केर न चाहिंदो गीत शराबी ऐं सोज भरियो रागी।
छोरो शर्वागी केर न चाहिंदो सरकश सिंधी जी शायरी तव्हां मोकिली आहे. वालेकुम अस्सलाम एंड मोलेल सलाम अदर केरी अदा चाहल आहे खुश आयो सफ़ा चाक सलेट कला मस्जिद डबी प्रोग्राम ते लश्पेश आहे वाह वाह सफ़ा अवां वांगुर थैंक यू पोस्ट के लाइक शेयर कंदा हलो. ज़ैन अली लिखते हैं कि तुमने देखा है सिर्फ आंखों को तुमने कहां देखा है आए हाय कहते हैं कि दिल करदा मैं तेनू वेखी सॉन्ग लगा दे. ओके ज़ैन आई विल ट्राई मैं आपके लिए वाला गाना लगा दूंगी. और अली दिना भाई हमारे साथ कश्मीर से भाई को वेलकम कहते हैं. फरवा हमारे साथ मौजूद है. वालेकुम अस्सलाम गुड आफ्टरनून मैं ठीक हूँ आप बताएं कैसी हैं फरवा. अब्दुल रजाक कुंभर भाई हमारे साथ मौजूद है मीरपुर खास से. आप हमारा शो सुन रहे हैं मीरपुर खास में भी आपको डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है तो परचेज कीजिएगा. अब्दुल रजाक भाई अबू हनीफ अल बलोची हमारे साथ है. वालेकुम अस्सलाम गुड आफ्टरनून आपको भी खुश आमदीद. और हमारे साथी जी फरवा आपने गाने की फरमाइश कर दी है मैं कोशिश करती हूँ आपका गाना लगा देंगे. और फहीम भाई आपने भी लिंक शेयर कर दी है आई विल ट्राई आपकी लिंक का गाना भी लगाया जाएगा. और बदले में बस आप जरा हमारी पोस्ट को लाइक और शेयर कर दिया करें ये बस बदला चाहती हूँ मैं आप लोगों से. तो पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे लोगों को हम बता पाए कि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके वो कितने ज्यादा खूबसूरत हो सकते हैं. और यहाँ पर चाचा खालिद हमारे साथ कहते हैं सबको सलाम अर्ज है बेटा सिद्रा मुस्कान. वालेकुम अस्सलाम चाचा कहते हैं कि हमारे पास तो खूबसूरती डी स्किन ब्यूटी क्रीम लाई है. वही तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के चर्चे चल रहे हैं भाईजान आजकल हर जगह. और मलिक नजर हुसैन भाई हमारे साथ है. आप हमें सुन रहे हैं बहावलपुर से क्या बात है जी आपको वेलकम इन खुशामदीद हो गया. अलीशा क्वीन कहती है कि हर कोई जान नहीं वारेगा तुम पर जमाने के सीने में मेरा दिल थोड़ी है. अरे भाई ये तो कमाल हो गया अलीशा बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं. और हमारे साथ ही जी सर महर इरफान सियाल साहब कहते हैं गुड आफ्टरनून मैम आरजी. गुड आफ्टरनून सर आपको भी वेलकम. और आज हमारे सर इरफान

0: पाण बि गुल आही हथ में गुलाब खणी निकती आही अच्छा गानो हलाईंदासी डेडिकेशन आहे तव्हांजी अज़हर लगारी आकिब लगारी आज़म लगारी अनवर लगारी आरजे गुलाम मुस्तफ़ा टालपुर इमाम बख्श खोखर सिस्टर डी स्किन ब्यूटी क्रीम बहुत अच्छी है और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है क्या बात है जी डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाने वाले लोग बिल्कुल इस तरह सेटिस्फाइड है तो आप जो लोग हमें सुन रहे हैं सारे लोग डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिए ताकि आपको भी पता चले कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम का कमाल कितना जबरदस्त है कितना धमाल है और इसी के साथ साथ मर्द हज़रात ख़वातीन सब इस्तेमाल कर सकते हैं और इसी के साथ साथ हमारे साथ हैं जी फहीम भाई कहते हैं अदा अब हमको घर वालों के ताने नहीं मिलते अब आप कमाने लगे ना इसीलिए देखें मेरी बात सच हो गई अली रजा भाई आपका बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ स्टिकर सेंड कर दिए बहुत शुक्रिया और हाँ झंडोमरी में बिल्कुल डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है तो झंडोमरी वाले लोग भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं अलीशा कहती हैं कि पबजी प्लेयर अक्षर अली चांडियो और मोहसिन अली चांडियो पबजी प्लेयर सदाम हुसैन मेरा प्यारा भाई आपका शो सुन रहा है ये सारे लोग पबजी खेलते हैं हाय अल्लाह चलिए सबको बोलें कि आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी लगा लें ठीक है और इसी के साथ साथ यहाँ पर टाइम हुआ है शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं उसके बाद जल्दी वापसी आप लोगों के पास आते हैं तो आप हमारे साथ मौजूद रहिए सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए पूरी 3 बजे तक मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूं सो सीटी में स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाइए और खूबसूरत हो जाइए
1: स्किन हर इन्हीं जलाए छा डैमेज ए डल स्किन के कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जंहिं में आहिनि चांवरनि जूं खूबियूं ऐं कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द खे रीस्टोर करे हुन जी नमी खे लॉक करे ऐं चांवरनि जूं खूबियूं जिल्द मां फाइन लाइन्स ऐं झुरियुनि खे घटि कनि ऐं रिंकल्स खे घटि करे सिर्फ 3 ॾींहनि में जिल्द खे बणाए नरम मुलायम ऐं ब्राइट उन सां गॾोगॾु सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जंहिंजी हर कतरे सां चेहरे के मिले वधिक खूबसूरती हर हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स
2: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज़ अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान

Shiva.

खरन में वरथा वेण सहल ऊजे हक भंजल से सचू की सूमरा ओ जय सतिय सतु न छडियो उहा मारुई मर जाई अचे उमर कोट में जहनोई न लजाई जा सागल सदाई उहा मार

0: जड़ी आयस जीअं शल तड़ी वना तन दे लालाई जो लतीफ जे करम गन उठा मी मारी लदुम मेरा सब जमा दरसी खेस कायारी का धजी हुतों अचे तही कंदु खण दस की अग्यों मने मा
1: مستقیم

ਸਤਮੁ ਜਮੇ

परचेज करे ईंदा त कुझु निशानियूं तव्हांखे यादि रखणियूं आहिनि जीअं डीस कंप्यूटर क्रीम खे तव्हां वठणु वञो था त दुकानदार तव्हांखे का ॿी प्रोडक्ट न ॾेई छॾे हुन जी वजह सां तव्हांखे ख़बर हुजे त बाबा डीस कंप्यूटर क्रीम जे मथां जेको डबीअ जे मथां फोटू आहे न उहो डॉक्टर माई जो फोटू अथव इहा चीज हिकड़ी यादि रखिजो हांजी डीस कंप्यूटर क्रीम जी जेका डबी आहे हुन ते डॉक्टर माई जो फोटू आहे इहा चीज यादि हुजे डीस कंप्यूटर क्रीम वॾनि वॾनि अखरनि में लिखियल अथसि समझी विया सो तव्हां बिल्कुलु सही प्रोडक्ट जॾहिं परचेज कंदा तॾहिं तव्हांखे सही रिज़ल्ट मिलंदा न ऐं अक्सर माण्हू अची चवंदा आहिनि त भाजी असां तव्हां वारो प्रोडक्ट इस्तेमालु कयो रिज़ल्ट कोन मिलियो आहे हालांकि ॻाल्हि इहा हूंदी आहे त हुननि रिज़ल्ट ई जेको आहे न हुननि खे कीअं मिलंदो छो त हुननि प्रोडक्ट ई कोई ॿियो लॻायो हूंदो आहे जॾहिं तव्हां दुकानदार वटि वञो था हिन वटि उहो प्रोडक्ट नाहे जेको तव्हां वठणु विया आहियो उहो ज़ाहिर ॻाल्हि आहे तव्हांखे को ॿियो प्रोडक्ट ॾेई छॾींदो ऐं तव्हां एतिरा मासूम आहियो एतिरा मतिलबु मासूम आहियो मूंखे ख़बर न आहे पवंदी त हिन अहिड़े दौर में तव्हां एतिरा मासूम कीअं आहियो हांजी इतना मासूम होना भी जुर्म है इतना मासूम नहीं होना आपने थोड़ा तो बाबा पान में थोड़ो पैदा कयो इन चीज के तो मानू ताकि बेवकूफ न बनाए सकन आसानी से न बनाए सकन आई तमा अगर डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठण वणो तो ता सिर्फ आई सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम ही वठी अचो आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम जें जे अंदर विटामिन ई बीट्स आहेन माइक्रो बीट्स आहेन अल्फा आर्बुटिन हा कोजिक एसिड आ ग्लूटाथायोन ये सब चीज एड थियल आहिन बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे अंदर आई हाने ये सब नाला बुधी करे ताके लगनो तो बाबा प्रोडक्ट डाडो महंगो हुंदो कोई प्रोडक्ट महंगो कोने कोई नॉर्मल मुनासिब कीमतुनि में तव्हांखे मिली रहियो आहे अफोर्डेबल आहे सफ़ा तव्हांजे लाइ ऐं हिन प्रोडक्ट खे इन तरीक़े सां ठाहियो वियो आहे जे तव्हांखे हिकड़ी क्वालिटी वारी चीज ॾिनी वञे छो त मार्केट में खोड़ सारा प्रोडक्ट तव्हां ॾिठा हूंदा पर जॾहिं तव्हांखे क्वालिटी वारा प्रोडक्ट न मिलंदा आहिनि त तव्हां थोरो मतिलबु निराश थी वेंदा आहियो तव्हां थोरो सम्झ में न ईंदो आहे त हाणे असां प्रोडक्ट इस्तेमालु कयूं या न कयूं पर तव्हां वटि जॾहिं डी स्किन ब्यूटी क्रीम अची वई आहे त इन खे सफ़ा इग्नोर न कयो मुंहिंजे चवण ते हिकु मरतबा लाज़मी लॻाए ॾिसो तव्हांखे रिज़ल्ट एतिरा कमाल मिलंदा तव्हां पाण ई चवंदा सिदराबाद जी सफ़ा सही पई ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे अंदर जेका ही विटामिन ई बीट्स ऐं माइक्रो बीट्स आहिनि इन जो थोरो खुलासो कंदी हला मां त डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे अंदर विटामिन ई बीट्स ऐं माइक्रो बीट्स जो छा कमु आहे ही जेके माइक्रो बीट्स ऐं विटामिन ई बीट्स आहिनि इहे बाबा पूरे पाकिस्तान में हेॾा हेॾा मतिलबु करोड़नि जी तादाद मूंखे लॻंदो आहे प्रोडक्ट्स आहिनि उन्हनि हेॾनि सारे प्रोडक्ट्स में सिर्फ़ु ॿ या टे प्रोडक्ट आहिनि जंहिंजे अंदरि विटामिन ई बीट्स ऐं माइक्रो बीट्स खे एड कयो वियो आहे इन जो रीज़न इहो आहे त तव्हांखे जेको रिज़ल्ट मिले उहो अहिड़ो रिज़ल्ट मिले जीअं तव्हां कोई महांगो फेशियल लॻायो आहे ऐं तव्हां किथां महांगे सैलून मां थी आया आहियो ऐं तव्हांजो जॾहिं फेस ग्लो कंदो तव्हांखे ख़ूबसूरती मिलंदी पोइ तव्हां पाण चवंदा बाबा असां पहिरियां छो न पिया डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कयो ख़ैर हाणे बि देरि कोन थी आहे तव्हां हाणे बि लॻाए सघो था हाणे बि वठी सघो था डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे अंदरि विटामिन ई बीट्स ऐं माइक्रो बीट्स जेके आहे न इहे बाबा शो स्टॉपर आहिनि इन्हनि प्रोडक्ट जी जेको आहे न सफ़ा लेवल खे वधाए छॾियो आहे सो अगरि तव्हां बि इस्तेमालु करणु चाहियो था त इस्तेमालु कयो हर स्किन जे मथां लॻाए सघिजे थो ऐं सिर्फ़ु ॿ रातिनि में तव्हांखे रिज़ल्ट मिलंदो वाह साईं वाह इहे त कमाल हो गया ऐं अगरि तव्हां बि इस्तेमालु करणु चाहियो तव्हांजे घरनि में शादियूं आहिनि या वरी तव्हांजी पंहिंजी शादी थी रही आहे त तव्हां बि लॻाए सघो था मर्द हज़रात लॻाइनि ख़वातीन लॻाइनि ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कोई बि साइड इफेक्ट कोन्हे छो त बाबा ही मेडिकेटेड फार्मूलो आहे ऐं मेडिकेटेड फार्मूलो मतिलबु हिन खे डॉक्टर्स ठाहियो आहे जेके तव्हांजे स्किन जे हिसाब सां फार्मूला ठाहींदा न बिल्कुलु न सो ही डॉक्टर्स फार्मूलो ठाहियो आहे को बि टेंशन जी ॻाल्हि कोन्हे का तव्हां लॻाए सघो था दिलि खोले लॻायो ऐं पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल करायो ऐं जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम सां गॾु तव्हांखे डी स्किन जो फेस वॉश बि मिली रहियो आहे डी स्किन जे फेस वॉश सां पंहिंजो मुंहुं धोअ रहो ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻाईंदा रहो ऐं सुहिणा सुहिणा थींदा रहो सो ही कमाल आहे डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो जेको तव्हांखे तॾहिं मिलंदो जॾहिं तव्हां इस्तेमालु करे ॾिसंदा इहा ॻाल्हि बिल्कुलु इहा ॻाल्हि अथव सो तव्हां बि लॻायो डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं डी स्किन फेस वॉश हाणे जेके जेके सुहिणा माण्हू असां सां गॾु मौजूद आहिनि मूंखे ॿुधायो केरु केरु डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु करे पियो ऐं जेको मूं अॼु अव्हां खां सवालु पुछियो आहे सवाल थोरो रिपीट कंदासीं जिन अञा ताईं कोन ॿुधो आहे हुननि खे बि ख़बर पइजी वञे जीअं असांजे प्रोग्राम में सवाल खे जेको आहे फॉलो करे सघनि त सवाल इहो पुछियो आहे ज़िंदगी में सभ खां वॾो नुक़सान तव्हांजो कहिड़ो थियो हांजी आई आज हम नुक़सानात के बारे में बातें करते हैं उहो गानो आहे न कैसे हुआ खसारा बिल्कुल वैसे ही आज हम जरा अपनी जिंदगी के नुकसानात के बारे में बात करेंगे क्योंकि हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं जो कि बस हो जाती हैं और हमें बाद में रियलाइज होता है कि भाई काश ये ना होता काश वो ना होता तो जिंदगी कितनी अच्छी होती लेकिन ये जो काश होता है ना हमारी लाइफ के अंदर इसका होना भी मुझे लगता है कि जरूरी है क्यों क्योंकि अगर ये काश ना होता तो भाई हम तो बेमकसद जिंदगी जी रहे होते तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइए और मुझे बताइए कौन और कहां से हमें सुन रहे हैं आपकी सिद्धराम के साथ मौजूद है मुझे बताइए आप कौन हमारे साथ है

ऐसे आपको तो कोई नहीं लूट जाता ना फोटो दिखा के, क्योंकि आजकल एआई का ट्रेंड चल रहा है, इंसान कुछ एक है और एआई उसे कुछ और ही बना देता है। तो आजकल मैं भी ये सोच रही थी कि आज तो ऐसा वाला सीन हो चुका है कि लोगों को आराम से बेवकूफ बनाया जा सकता है, उन्हें पता नहीं चलेगा कि अगला इंसान जो है वो रियल में कैसा है। तो अगर आप भी इन चीजों से बचना चाहते हैं और अपने लिए अच्छी खासी खूबसूरती को हासिल करना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर लीजिएगा। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आपको इतना खूबसूरत, इतना प्यारा बना देगा कि आपको फिल्टर लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एआई का सहारा तो खैर बहुत दूर की बात है, तो लगाइए डी स्किन ब्यूटी क्रीम और खूबसूरत हो जाइए। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं, मैसेजेस की जानिब आ जाते हैं।

गाना फुल वाइब वाला है। अलीशा हमें सुन रही है थारो शाह से। मामू परवेज अली चांडियो आपका शो सुन रहे हैं, मामू को वेलकम कहते हैं बहुत शुक्रिया के साथ। और आपके एरिया में डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है? नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जेन और आप एक ही सिटी से हमारा शो सुनते हैं, और जेन ने कल परसों ही बताया था कि थारो शाह में डी स्किन ब्यूटी क्रीम नहीं मिल रही है, तो हम अवेलेबल कराते हैं। अच्छा फहीम भाई कहते हैं ये टॉपिक मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आप हमें सवाल का आप जवाब नहीं देते, मैं दूंगी आज, दूंगी तो आप भी दीजिए। परवाह बहुत शुक्रिया आपका। चाचा कहते हैं अच्छा लगता है वालदेन और बहन भाइयों की जुदाई जिंदगी में सबसे बड़ा नुकसान हुआ, ये टॉपिक आंसर। ओके हमारे साथ ही हमारे प्यारे तारिक भाई, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम प्यारे भाई। और मोहम्मद जमान हमें सुन रहे हैं, वेलकम, आपको भी वेलकम कहते हैं प्यारे भाई। और अली रज़ा हमें सुन रहे हैं दुबई से। ओके कहते हैं सही है भाई, सही है अली रज़ा भाई, जियो करे सर। और गाना सुनिए। अच्छा तारिक भाई ने लिखा है हैप्पी बर्थडे सर इरफान सियाल साहब। हां जी आज इरफान सियाल साहब का हैप्पी बर्थडे है। और दाऊद अली पिताफी हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम क्या हाल है आगे दाऊद पिताफी, मेरी तरफ से सबको सलाम कबूल हो जी, वालेकुम अस्सलाम कबूला। और अली रजा भाई बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। फरवा आपने भी बर्थडे विश करी है, थैंक यू सो मच। अबू हनीफ अलबलोची लिखते हैं कि जिस कदर तलब होती है मुझे तेरे मुमकिन है कि तुझे बताने के बाद जो अच्छा तुझे बनाने के बाद जो मिट्टी बची हो उससे मेरा दिल बनाया गया हो भी सकता है, होने को तो कुछ भी हो सकता है ये ना। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाया था कोने दस होता सही खबर तो पवे। यासीन खंड में सुन रहे हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम कैसी हो, तबीयत कैसी है, आपका शो नंबर वन होता है। और मैं डी स्किन शॉप के दूसरी अच्छा डी स्किन ब्यूटी क्रीम की दूसरी डब्बी भी लेकर आया हूँ, बेहतरीन रिजल्ट मिल रहा है और खुशबू भी बेहतरीन है, क्या बात है, तमाम दिल्ली खटे छो बाबा। डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी 20 डब्बी वी आया, ॾिसो ॾिसो माण्हू ईअं ई कनि पिया जेके जेके डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कनि पिया, तव्हांखे एतिरो मज़ो अची वेंदो डी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻाए, तव्हां पोइ हिक छा बच्छा टे छा सौ दबियूं लॻाइण ते मजबूर थी वेंदा। सो लॻायो बबल लॻायो।

हाँ जी, आप सुन रहे हैं वाई टेशन डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी क्रीम के तावन से। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम है, लगाइए और खूबसूरत हो जाइए। हिदायतुल्ला कहते हैं कि सिद्रा माफ कर देना अगर कोई गलती हुई हो मुझसे, तो अब हम भी हद में रहेंगे मैसेज करके। क्या हुआ भाई, तां के बैठे बैठे वरी छाती हुए। और किशोर भाई हमारे साथ कहते अदा, ओ मुझा प्यारा क्यूट अदा स्मार्ट आयो जाए जा। अच्छा कहते हैं अदा आओ अवहां जे चवण ते स्टोर ते वन्या, पर वापस केंजे चवण ते अच्छा था वापस भी मुझे चवण ते अच्छो। छो तो मां चंदिया ता वठी अचो, वठी अचो सही आ। माइने चंदे ता ता सिर्फ वन्यो, ता वठी अचो माना मोटी भी अचो। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम ता वठी ना, आई तवा जे पंजे करीबी जनरल स्टोर्स ते भी अवेलेबल आ है। अच्छा तारिक भाई कहते अदी थारो शाह में अवेलेबल करवा दी है डी स्किन ब्यूटी क्रीम। बुद्धो बाबा बुद्धो जेन तमाम भी बुद्धो अलीशा तमाम भी बुद्धो, थारो शाह में हाँ तुम्हारे लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिली रही है। सो वनो वेठी दिसो तारिक भाई जी केडी फास्ट सर्विस आए, कल टोडियो गाल कई से आई हाँ ताजला डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल भी थी वही है। सो वनो बाबा वठी चो आई बो कहते अवेलेबल करानी है, तुम मुख्य बुधायो जी असा बुधाए सकूं तवा के, तो उते मिले थी या नथी मिले।

बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत सा गाना हमने एंजॉय किया। और आप देश की ब्यूटी क्रीम लगा रहे हैं, नहीं मुझे बताइए। और चाचा खालिद कहते हैं कि महर इरफान सियाल साहब को हैप्पी बर्थडे और कामयाब शो डी स्किन ब्यूटी क्रीम स्पॉन्सर्ड के लिए भी बेस्ट विशेस और रिक्वेस्टेड फॉर रिवॉर्ड गिफ्ट। अरे भाई कैसी बातें कर रहे हैं, वैसे वो बहुत अच्छे, मतलब बहुत अच्छे हैं, मतलब मैं स्पीचलेस हो जाती हूँ। सर इरफान सियाल साहब इतनी अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक हैं। हमने बहुत ही प्यारा गाना लगा लिया है और साथ साथ किशोर भाई कहते हैं कि आ चाहिए तो मुंजी मानू, अच्छा मुखे मानू। भाई आप कुछ अलग ही मखलूक हैं, तो आप भी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइए। हमारे साथ दर्दे दिल आ चुकी है प्रोग्राम में, वालेकुम अस्सलाम कहती चंदा, गुड आफ्टरनून, कैसी हो? नाइस, यो ब्यूटीफुल, नाइस वॉइस, माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच प्यारी। और फहीम भाई कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू सर इरफान सियाल साहब। ओके, इमरान खान रुख हमारे साथ है, हम भी आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया इमरान भाई। दर्दे दिल कहती है कि मैं निदा हूँ और अलीजा आयशा भी साथ साथ हैं, शो सुन रही हैं। ओके जी, सब स्वीटीज को वेलकम कहते हैं। दर्दी दल कहती कितनी प्यारी फोटो थी, क्या डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाया होगा? यस यस, डी स्किन ब्यूटी क्रीम को लगाया था, इसीलिए प्यारी फोटो आई थी बिना फिल्टर वाली। अगर आप भी प्यारे बनना चाहते हैं तो आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइए, और आप बिना फिल्टर के भी फोटो खिंचवाना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाए, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाने के बाद आपके चेहरे पर जो है ना इतनी ताजगी आ जाती है, इतना निखार आ जाता है, इतनी फ्रेशनेस आ जाती है कि लोग देखकर पूछते हैं भाई बुधाई होता है, छाता इस्तेमाल करो।

0: हमारे साथ मौजूद है अली नवाज सारखी और कहते हैं मर इरफान सियाल साहब को बर्थडे की मुबारक दे रहे हैं और कहते हैं एफएम पर एड चलाने की भी मुबारक। अच्छा हाँ, ये तो वाकई बहुत उनकी मेहरबानियां हैं और बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। मेरे ख्याल में पता नहीं मैं क्या बोल रही थी। अदा तव्हां डेज कंड ब्यूटी क्रीम लगाई आहे कोन मूंखे ॿुधाइजो। ऐं यासीन खंड तव्हांखे प्रोग्राम वणी पियो, थैंक यू। इन सज्जन को क्या तकलीफ़ पूछनी चाहिए वाके। अमानुल्लाह महर भाई वालेकुम अस्सलाम। हिदायतुल्लाह लिखते हैं कि लोग तो लोगों के कहने पर लगते थे लेकिन सिदरा तुमने भी वही किया। भाई छा थियो तव्हांखे वेठे वेठे जिन चढ़ी वियो छा भला। मूंखे ॻाल्हि सम्झ में कोन थी रही, कल त चङा भला हुया।
1: It's 2 p.m. This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli glow har dia jo show. A product by Biocon International Pakistan.
3: Ab aap sunenge GAFM network par KTN News.
4: Brought to you by
5: Super Vibes Rice Collagen Beauty Cream.
6: A product by Aksa Cosmetics Pakistan.
0: Aap koi short commercial break hunda. Waapsi jaldi moti

केपीके में गवर्नर राज लागू कजे या एमरजेंसी वजीर आजम के इजलास बाद बे सदर केपीके की सूरत हाल ते अहम इजलास सराय वरतो खबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लागू करण या एमरजेंसी बाबत मुख्तलिफ ऑप्शन से मुशावरत कई वी वजीर आजम शहबाज शरीफ वफाकी वजीर ए आला सदरकारी अमलदार की शिरकत जो इम्कान केपीके के अमन अमान वारी सूरत हाल इंतजामी मामलन ए सूबे के मौजूदा सियासी सूरत हाल जो भी जायजो वरतो वो केपीके में गवर्नर राज एमरजेंसी बाबत हतमी फैसलो किया वजीर आजम वट थियल इजलास में घरू वजीर अमन अमान की सूरत हाल ए कानून वाले वजीर सेनेटर आजम नजीर तारड़ गवर्नर राज एमरजेंसी बाबत कानून ए आइन बाबत ब्रीफ किया।

डीजीआईएस पीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ शाम 5 वगे प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदो। पाक फौज जो तर्जमान दहशतगर्दन खिलाफ कार्रवाई बाबत ब्रीफ कंदो। गलतियों मां न सिखंदासी त कडहिं बि तरक्की न करे सघंदासी। अस्करी कामयाबियुनि सां गॾु मुआशी कामयाबियुनि में बि फील्ड मार्शल जो किरदार सारा जोॻो रहियो आहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चयो आहे त फील्ड मार्शल जे ज़िक्र खां सवाइ समूरियूं कामयाबियूं पूरियूं आहिनि। IMF जे सरबराह चयो त हीउ नओं पाकिस्तान आहे। बजट में ॾिनल मराइतनि जा नतीजा साम्हूं अची रहिया आहिनि। पूरी दुनिया में पाकिस्तान हिकु मिसाल क़ाइमु कयो। इनशाला ईंदड़ वक़्त में पाकिस्तान दुनिया जे मज़बूत मैशियत हूंदो। वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह जी सदारत हेठि काबीना जो इजलास। सरकारी ज़मीन जे अलाटमेंट ऐं इस्तेमाल बाबति नओं क़ानून आणण जो फ़ैसिलो। कॉलोनाइज़ेशन ऐं डिस्पोज़ल ऑफ गवर्नमेंट लैंडर एक्ट 1912 जी जाइ ते सिंध गवर्नमेंट लैंडर मैनेजमेंट एक्ट 2026 जो मसौदो पेश। मुराद अली शाह जी काबीना मेंबर ते नए क़ानून ते 10 ॾींहं अंदरि तजवीज़ूं ॾियण जी हिदायत कई वई आहे। मीर रज़ा केस जी जांच कंदड़ अदालती कमीशन जे मुदे में बि 15 ॾींहनि जी वात कई वई आहे। कमीशन 15 अक्टूबर ताईं कम करे सघंदी। मुराद अली शाह चयो आहे त सिंध गवर्नमेंट लैंडर मैनेजमेंट एक्ट 2026 बाबति फ़ैसिलो काबीना जे ईंदड़ इजलास में कयो वेंदो। सीड़पकारीअ खे हथी ॾियण लाइ कम करे रहिया आहियूं। मुआशी इशारा बे मुसबत आहिनि। असांजो हदफ़ बरामदात ते ॿधल मैशियत आहे। नाणे वारे वफ़ाकी वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब चयो आहे त परॾेही सीड़पकारनि सां गॾु मुक़ामी सीड़पकारीअ खे बि सीड़प तरफ़ आणणो आहे। महांगाई बि सिंगल डिजिट ते आंदी हुई, जेका ख़िते में जंग सबबु वधी। FBR सुठो कमु करे पई। सेप्टेम्बर जो हदफ़ हासिल कयो आहे। सियासी इस्तकाम लाइ बि वेही ॻाल्हियूं करणियूं पवंदियूं। पाकिस्तान जे अफ़ग़ानिस्तान में दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ फ़िज़ाई कार्रवाई। 22 ख़ारजी दहशतगर्द मारिजी विया। सुध समाओ वारे वज़ारत मूजिबि ऑपरेशन गज़बुल हक़ तहत अफ़ग़ानिस्तान में कार्रवाई कई वई। ॿिनि हंधनि खे निशानो बणाए दहशतगर्दनि जे कैंपनि खे तबाह कयो वियो। सिक्योरिटी फोर्सिस जो KPK ऐं बलोचिस्तान में ऑपरेशन। केतिरा ई दहशतगर्द मारिजी विया। बलोचिस्तान जे ज़िले कच्छे में फोर्सिस जी कार्रवाई। 6 दहशतगर्द मारिजी विया। सिक्योरिटी फोर्सिस मूजिबि दहशतगर्दनि खे क्वाड कॉपरस ज़रिए निशानो बणायो वियो। फोर्सिस जे उत्तर वज़ीरिस्तान में बि कार्रवाई कई। केतिरा ई दहशतगर्द मारिजी विया। ईरान ते ॿीहर हमिलो करणो आहे या मुआहिदो? फ़ैसिलो करण वारो आहियां। मामिलो जल्दी पुॼाणीअ तरफ़ वधी रहियो आहे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो बयान। दिफ़ा वारे वज़ीर पेट हेगसेथ चयो आहे त अमेरिका ईरानी बहरिया फिज़ाई ऐं दिफ़ाई सलाहियत खे मुकमिल तौर ते ख़तमु करे छॾियो आहे। हाणे ईरान मफ़लूज़ मुल्क आहे।

सऊदी अरब कंहिं बि हमले या खतरे जो जवाब ॾियण में न कीमाईंदो। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान शोरा काउंसिल जे सालियाने इजलास खे ख़िताब कंदे चयो आहे त हुसे नफ़रत तफ़री तबाही ऐं खिते खे धमकाइण जी चूंड कई आहे। सऊदी अरब सूडान जी वहदत जी हिमायत बि जारी रखंदो। नेतन्याहू जी मेज़बानीअ जा नतीजा सुठा न निकरंदा। ईरान जे क़ौमी सलामती बाबति सलाहकार मोहसिन रज़ाई चयो आहे त अमेरिकी अॾनि UEA खे सिक्योरिटी फराहम न कई। अहिड़ी तरह ग़ज़ा जी कासाई जी मेज़बानी गॾियल अरब इमारतनि खे फ़ाइदो न ॾींदो। UEA गुज़िरियल जंगनि मां सबक सिखे ऐं जंगियूं भड़काइण खां पासो करे।

ड्रग्स डीलर अनमोल उर्फ पिंकी खिलाफ़ मंशियात केस जी बुधड़ी अदालत पारां पिंकी के वीडियो लिंक जरिए पेश न करण ते कावड़ जो इज़हार कयो। प्रोडक्शन आरडी जारी। वुमेन जेल सुप्रिंटेंडेंट का जवाब तलब बुधड़ी मुलतवी कई वही।

गुडू में पंजाब पुलिस के मुबैन मुकाबले में एक जनों मारजी वो पंजाब पुलिस सथा मुकाबले में मारजी वे की सुणप नी सी लाश अस्पताल मुंतकिल पुलिस चवण है सिंध पंजाब दंगवट पुलिस मुकाबले में एक जनों मारजी वो जवाबदार फरार थी वह मेहड़ में जतोई बिरादरी जो नौजवान ते हमले खिलाफ एहतजाज मुजाहरीन चयो त नौजवान नेमतुला जतोई ते हमलो करे जख्मी कयो वयो आहे जवाबदार गिरफ्तार कया वञनि चक में असगरवा ते अणॼातल माण्हुनि पारां फसल जी भेल करण खिलाफ़ मुतासिर आबादगारनि जो एहतजाज मुख़्तलिफ़ बिरादरी जे माण्हुनि एहतजाज कयो त जवाबदार फसल उणी अनाज खणी वञनि था ॻोठनि जे चङनि मुड़सनि वटि दाह खणी वियासीं पर उन्हनि बि असां ते तशदुद कयो जवाबदारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई करे वधीक नुक़सान खां बचायो वञे नवाब शाह में औरत जो धीअ ते सहुरनि जे मुबैना ज़ुल्मनि ख़िलाफ़ एहतजाज ॻोठ फ़क़ीर जी खोई जे रहवासण चयो त धीअ समीना खे संदसि मुड़ुस सहुरे ऐं ॾेरनि कारे इल्ज़ाम मड़ी तशदुद कयो आहे धीअ सां ज़ुल्म कंदड़ संदसि मुड़ुस सहुरे ऐं ॿियनि जवाबदारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वञे

0: ऐं दुनिया जे पहिरें सिंधी सेटेलाइट चैनल KTN जी 24 KTN न्यूज़ जी 19 ऐं म्यूज़िक चैनल कशिश जी 21 सालगिरह मल्हाई पई वञे। KTN न्यूज़ पारां सिंध वासियुनि खे ड्रामनि ऐं ॿियनि प्रोग्रामनि ज़रिए तफ़री पहुचाइण वारो सिलसिलो जारी। कशिश सिंधी म्यूज़िक जे जियापे जो ज़रियो बणियल KTN न्यूज़ सिंध जे ॿरंदड़ मसलनि ते हिन वक़्त बि सिंध जो सभ खां वधीक मुयसरु आवाज़ बणियल। पाणीअ जो मसलो हुजे या NFC अमुन अमान जी सूरत हाल हुजे या ॿिया मसला, KTN न्यूज़ सिंध वासियुनि जो आवाज़ बणियल।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: Brought to you by Super White Oil Free Beauty Cream, मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। Super White Oil Free Beauty Cream के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। A product by अक्सा Cosmetics पाकिस्तान।
3: अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है। तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की? ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
4: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
3: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
4: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। And I am using vitamin C cream for best and glowing clean skin.
3: अच्छा, variants सबके different, लेकिन choice सबकी है। Super

वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जीएफएम 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मिरर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली नूरियाबाद और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से। आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। और यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में ही बातें हो रही हैं और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में क्यों ना बातें हो, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपकी खूबसूरती के लिए इतनी ज्यादा जरूरी है कि जब मैं बताने पर बैठ जाऊँ तो भाई ये दो घंटे क्या मतलब पूरा दिन ही में बताते थक नहीं जाऊंगे, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम की इतनी ज्यादा वाली क्वालिटीज है और इसके अंदर जो तमाम चीजें ऐड की गई है उसके कितने सारे फायदे आपकी स्किन के ऊपर आने वाले हैं वो तो तभी महसूस होगा जब आप इस्तेमाल करने लगेंगे। तो इस्तेमाल करते रहिए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं तो मुझे बताया करें ताकि हमें पता चले कि भाई साहब आप लगा रहे हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम। उनके अलावा तमाम के प्रोग्राम में चौथा भली करी आया, प्रोग्राम के दूसरे घंटे में हम आ चुके हैं। तो जनाब बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद है। पोस्ट को जरा साथ साथ लाइक और शेयर करते जाइए, अपने होने का एहसास लाते जाइए। और मैंने आज आप लोगों से पूछ लिया है कि आप मुझे बताएं जिंदगी में सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ। यस, आज आप मुझे बताएंगे कि आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा नुकसान आपका क्या हुआ है। उनका अलावा अगर तहां पांजे करीबी जनरल स्टोर्स से डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश की अवेलेबल कराइण चाहियो था तो तहां जिला नंबर साइंस नंबर से तहां रातो करे इजीली पांजे करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम हुजे या वरी डी स्किन फेस वॉश हुजे उन्हें की अवेलेबल कराए सको था। सो जनाब नंबर आहिन 03-12-50-25-907 बड़ी 300-50-25-970 आई बियो नंबर आहे 03-27-38-4309 बड़ी 300-32-73-84-309 ये उही नंबर साइन जे के तमाम डायल करे इजीली पंजे के ही भी करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश की अवेलेबल कराए सको था। सो एतरी जबरदस्त तमाम वट अपॉर्चुनिटी मौजूद आए तमाम नमा जरूर फायदो वठो आई तमाम नंबर से रातो करे लाजमी पंजे करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश के अवेलेबल कराईंदा रहो। जी तमाम जले आसानी हो जे बस तमाम पाने करीबी जनरल स्टोर से हल्या वणो आई तमाम आराम सा डी स्किन ब्यूटी क्रीम के परचेस करे सको। ओके सो अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज कर रहे हैं या फिर डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप यूज करने वाले हैं तो मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ कि भाई ज्यादातर ऐसा हो जाता है ना कि हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारी स्किन के ऊपर कौन से प्रोडक्ट चाहिए या फिर कौन से प्रोडक्ट हमें लगाने चाहिए। जो आप ऑलरेडी प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं उनका जो असर आपको मिला है वो तो आप देख ही चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि भाई हमें बचना चाहिए ऐसे प्रोडक्ट से जिनके अंदर बहुत सारे केमिकल होते हैं और बहुत सारे इस तरह की चीजें की जाती हैं जो कि जल्दी में आपको गोरा तो बना देती है लेकिन बाद में बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आपके चेहरे पर छोड़ जाते हैं, तो अगर आप उन तमाम चीजों से बचना चाहते हैं कुछ अच्छा कुछ इफेक्टिव इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जनाब आपके पास डी स्किन ब्यूटी क्रीम मौजूद है। और मैं जो जो बताती हूँ डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में बिल्कुल सही बताती हूँ क्योंकि वाकई डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना वो वाकई इस तरह से प्रोडक्ट तैयार हुआ है कि आप उसे इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चाहे आप मर्द हजरात हैं चाहे आप खवातीन हैं हर कोई लगा सकता है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर तो जनाब विटामिन ई बीट्स हैं माइक्रो बीट्स हैं तो ये 2-in-1 फार्मूला हो चुका है। यानी कि ये नाइट क्रीम तो बजाहिर है लेकिन ये आप लोगों को जो रिजल्ट्स देने वाले हैं वो ऐसे मिलेंगे कि जैसे आपने कोई महंगा सा फेशियल कराया हो। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम की जो बातें हैं जनाब वो बड़ी कमाल की है और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 2 रातों में रिजल्ट देने वाला प्रोडक्ट है। और इसी के साथ साथ ये मेरी हेडेड फार्मूला भी है तो कोई टेंशन की बात ही नहीं कि भाई हम लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। आप सब लगा सकते हैं हर स्किन के ऊपर चाहे आपकी स्किन सेंसिटिव हो ऑयली हो ड्राई हो कॉम्बिनेशन टाइप हो हर स्किन के ऊपर आराम से डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज किया जा सकता है। और जनाब खूबसूरती की बात हो और स्किन केयर को नजरअंदाज कर दिया जाए ये तो हो ही नहीं सकता ना। आजकल हर कोई चाहता है कि भाई उसकी जिल्द जो है वो साफ सुथरी हो नरम और फ्रेश महसूस हो लेकिन उनके लिए ये चीज डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि हमने प्रोडक्ट कौन सा यूज करना है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी खूबसूरती में जो है वो इजाफा आना चाहिए और खूबसूरती को मजीद निखारने के लिए रोजमर्रा की ब्यूटी केयर में आप भी शामिल कर सकते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम को। इसका नरम और खूबसूरत एहसास आपकी स्किन केयर रूटीन को मजीद खास बना देगा। आपकी स्किन साफ सुथरी हो जाती है अच्छी तरह की स्किन हमेशा मॉइस्चराइज रहती है और आपकी जो शख्सियत है ना उसमें भी ताजगी और एतमाद का एहसास हो जाता है। तो अगर आप भी अपनी रोजमर्रा ब्यूटी के रूटीन को मजीद खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज बिल्कुल आप सब लोगों के लिए है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करते रहिए और खूबसूरती को वेलकम करते रहिए। ओके
करती हूँ उसके अलावा डी स्किन ब्यूटी क्रीम तो आप इस्तेमाल करेंगे, लेकिन साथ में आप लोगों के लिए डी स्किन का जो फेस वॉश मौजूद है तो उसका इस्तेमाल भी आपको करना चाहिए। डी स्किन का फेस वॉश अगर आप लगाने वाले हैं तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताती चलूं, तो डी स्किन का फेस वॉश जो है ना ये जनाब बहुत ही कमाल का और बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट है। तो डी स्किन का फेस वॉश जिसके अंदर हाइलोरोनिक एसिड सीरम एड किया गया है, और ये जो हाइलोरोनिक एसिड सीरम होता है ना ये बड़ा ही कमाल का सीरम है। इसका इस्तेमाल अगर आप अपनी स्किन के ऊपर करते हैं तो उससे क्या फायदा पहुंचता है आपकी स्किन को, आपकी स्किन जो है ना वो हमेशा हाइड्रेट रहती है, आपकी स्किन मॉइस्चराइज रहती है और आपकी स्किन डीपली क्लीन रहती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप इतने काम करते हैं घर के बाहर, आप काम करते मर्द हजरात जो हैं, तो आपके चेहरे पर बहुत ज्यादा गंदगी मिट्टी पॉल्यूशन वगैरह जमा हो जाता है और उन चीजों को हटाना रिमूव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप भी डी स्किन फेस वॉश का यूज कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं तो आपकी लाइफ थोड़ी आसान हो सकती है, क्योंकि आपके चेहरे पर जो है ना ये तमाम चीजें रिमूव हो जाएंगी, आपके चेहरे की स्किन जो है वो ग्लो करना स्टार्ट करेगी, आपकी स्किन मॉइस्चराइज हो जाएगी और आप खुद ही कहेंगे कि ये तो कमाल हो गया जनाब, और ये कमाल सिर्फ और सिर्फ डी स्किन फेस वॉश से ही हो सकता है। तो डी स्किन का फेस वॉश आप लगाइए, डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लगाइए और लगाकर मुझे जरूर बताइए कि आपको रिजल्ट्स कैसे मिलते जा रहे हैं। जैसे भी बहुत सारे प्यारे लोग आकर मुझे बता देते कि बाजी हमें अच्छा रिजल्ट मिला है, या बाजी हमें ये वाली जो है ना प्रॉब्लम थी वो खत्म हो चुकी है, हम डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाकर बिल्कुल जी प्यारे प्यारे हो चुके हैं। तो यही बिल्कुल चीज है मैं आप सब लोगों के मुंह से सुनना चाहती हूँ। आप सारे लोग मुझे बताइए कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम का कमाल आपको कैसा मिला है, और साथ साथ आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराते रहिए और इस्तेमाल करते रहिए। भाई साहब अच्छा प्रोडक्ट होना अभी आपकी जिंदगी में गनीमत होता है। तो अच्छा प्रोडक्ट अब आपकी जिंदगी में मौजूद होगा जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करेंगे, तो लाजमी से यूज कीजिएगा और मुझे जरूर बताइएगा कि आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर आपके कुछ फीडबैक्स हैं जिनको हम शामले प्रोग्राम रखते हैं। तो जनाब जी हाँ जी, यहाँ पर आप जो फेसबुक पर हमारे साथ लोग मौजूद हैं, पोस्ट को जरा लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि जब आप पोस्ट को लाइक और शेयर करते हैं ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और जितने भी लोग हमारी पोस्ट को लाइक और शेयर कर देते हैं तो उनसे गुजारिश है जनाब कि बहुत सारे लोगों तक हमारे प्रोग्राम को पहुंचाया करें, ताकि हम लोगों को बता सके कि आप सब लोग डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करके अपनी खूबसूरती में इजाफा ला सकते हैं। अच्छा फरवा कहती है कि टॉपिक आप ही, मैंने जिंदगी में एक खास इंसान खोया है, जिंदगी में खास इंसान को खो दिया, क्या बात है जी। और यासीन खंड आपको हम आपकी पसंद का गाना सुना देंगे, बस आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा जरा। उनका अलावा अच्छा किशोर भाई कहते हैं कि टॉपिक मुझी लाइफ में इलाही नुकसान थिया, पर हेकु नुकसान जी भरपाई न कोई करे सगियो, नहीं कोई करे सगंदो नुकसान मुझी अम्मी। हाँ भाई, ये एक ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई तो वाकई कोई नहीं कर सकता, और बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। अमानुल्ला महर भाई हमारे साथ हैं, क्या वेलकम कहते हैं प्यारे भाई को, मेटा ऑफिशियल हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। हेलो अलीशर बिरोही हमारे साथ हैं, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं। बेहना सिद्रा कैसी हो, शो बेहतरीन हो रहा है। डी स्किन ब्यूटी क्रीम मेहरापुर में ना मीरपुर बटोरो में नहीं मिल रही, चलें आपके एरिया में भी अवेलेबल करा देंगे, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ।

वाह सही वाह इहा खूबसूरती अथव जॾहिं तव्हांखे बि मिलंदी जॾहिं तव्हां टी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कंदा अलीशी बिरोही भाउ तव्हांजो मोहबतूं आहिनि प्रोग्राम ॿुधो पिया नसीम गुलाम दीन भाई हमें सुन रहे हैं नूरिया भाउ से भाई जान में ठीक हूं आप बताएं कैसे हैं ठीक ठाक है उन खां अलावा नसीम भाई लिखते हैं कि मुझे वक्त अच्छा जब वक्त खराब चल रहा होता है तो पीछे से हंसने वाली आवाजें जानी पहचानी सी लगती हैं और क्या कहते हैं हाँ जी बहुत शुक्रिया और इब्राहिम खान हमारे साथ अदी मंजूर का सॉन्ग सुनाए हाजिर बात आजी फरमाइश लगायूं था और दर्दे तो लिखती है कि ले गया वो सब कुछ मगर हौसला रहने दे यानी वीरान हवेली में एक दिया रहने दिया हम गए थे उसके पास इसी उसे मनाने के लिए वो खफा अच्छा लगा हमने खफा रहने दिया रुटो भलोआ परचन खापो वरी सहाई दो ये ना अच्छा अली रसे लगारी भाई मोहब्बत हुआ तव्हांजो प्रोग्राम पसंद कयो पिया और यासीन खंड कहते हैं आपका शो थर्ड पार्कर से सुनता हूँ बहुत शुक्रिया

अच्छा फहीम लिखते हैं कि अदा सर खालिद भी अच्छा इंसान है. बिल्कुल बिल्कुल, चाचो इज ऑल्सो गुड मैन. अच्छा रमजान भाई वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम अदर, कहते हैं कैसी हो बेना, जो नाइस चल रहा है, सॉन्ग लिंक भेज रहा हूँ. जी बिल्कुल आपका गाना लगा देंगे. और मेटा ऑफिशियल लिखते हैं कि तुम सिर्फ मोहब्बत नहीं वो खूबसूरत इत्तेफाक हो जिसने मेरी दुनिया को पहले से कहीं ज्यादा हसीन बना दिया. ओके थैंक यू. अच्छा रमजान भाई आपने भी शायरी भेज दी है, लिखते हैं कि दुनिया दिल का दर्द दिल तोड़ने वाले क्या जाने, प्यार की ताकत जमाने वाले क्या जाने, इतना दर्द होता है कब्र में ये ऊपर से फूल डालने वाले क्या जाने. ओके भाई क्या बात है, इतनी सैडी सी शायरियां भेज देते हैं. वासा भाई हमारे प्रोग्राम में कहते हैं मुझे प्यारी भेण अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम प्यारा भाई, ठीक आए हो. नजर मोहम्मद भट्टी भाई हमें सुन रहे हैं, कहते वेरी नाइस आपका प्रोग्राम फ्रॉम मटियारी. ओके भाई को भी खुशामदीद. अलीशा कहती है कि थारो शाह के किस शॉप पे आपने अवेलेबल कराई है, उस शॉप वाले का नाम बताएं ताकि मामू परवेज लेने जाए आप ही बता दें. अच्छा मैं अब शॉप का नाम आपको बता दूंगी. वैसे ऐसा किया करें कि थोड़े चार पांच शॉप्स के ऊपर जाइए, वहां से मालूमात आप खुद भी ले सकते हैं, नहीं तो आप मामू को भेज दीजिएगा तो वो आपके लिए परचेज कराएंगे. ठीक है ओके जी वासु भाई बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं और प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा है, बहुत शुक्रिया उसके लिए. सैयद धानी बख्श हमारे साथ है, बदीन से आप हमारे साथ है भाई जान, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं. एसन अली बुक्टी भाई लाड़कानी का दास प्रोग्राम बुध पाया, थैंक यू सो मच. अच्छा दर्द दिल ने लिखा है कि मेरी उम्र का खसारा पूछते हो, यानी मुझसे लोग अब तुम्हारा पूछते हैं. मैं बताता हूँ मेरा ताल्लुक नहीं रहा अब उससे, उन्हें यकीन नहीं आता वो दोबारा पूछते हैं. क्या बात है. अच्छा उनका अलावा हमारे साथी महर इरफान सियाल साहब कहते गुड आफ्टरनून मैम, वी आर लिसनिंग योर शो फ्रॉम बहावलपुर. क्या बात है जी, बहावलपुर से हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं. और उनका अलावा कामरान भाई भी हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं. कामरान भाई बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ. और जी आप पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए और मुझे बताइए आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल हो चुकी है या फिर अभी तक रहती है, क्योंकि अवेलेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है डी स्किन ब्यूटी क्रीम का आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर. ऐसा वाला सीन हो जाता है कि फिर आप मुझसे पूछते हैं कि बाजी हम कहां से जाकर परचेज करें, तो आप बस नंबर्स के ऊपर राता कर लिया करें. जैसे आप नंबर्स के ऊपर राता करेंगे तो आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल भाई साहब करा देंगे, तो आप जाइए और परचेज करते जाइए. उनके अलावा ही वालों सॉन्ग लाए हुआ इंजॉय करना सी. प्रोग्राम आप हमारे साथ मौजूद रहिए, आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स. लगाइए और खूबसूरत हो जाइए.

जी क्या बात है, बहुत ही प्यारा सा गाना एंजॉय कर रहे हैं। साथ साथ यहाँ पर पैनल की जाने बातें हैं तो बहुत सारे आपके मैसेजेस जमा हो चुके हैं। यहाँ पर महबूब अली मोरो सिटी से मैं सुन रहे कहते सिस्टर कुंज सिद्रा मुस्कान अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप हमेशा गुलाब की तरह फूलों की तरह मुस्कुराती रहो, आपका प्रोग्राम गुड है सिस्टर। न्यू सॉन्ग सुनाए फायजा का, हाँ जी लगाते हैं आपके लिए। और हमारे साथी वालेकुम अस्सलाम अदा, आपको और एफएम की टीम को अल्लाह पाक खुश रखे, आमीन सुमामीन। शहर गुलाब लगारी छोटा बाशम खान रिंद, और कहते हैं शहर गाजी खान रिंद से रिजवान अली रिंद, फैजान अली रिंद, शहजाद अली रिंद, छोटी कुनैन जहरा आपके साथ है। आपका शो सुन रहे हैं, शो लाजवाब है। हमें अंसारी, अच्छा हमीद अंसारी का गाना प्ले कीजिएगा, मैं कोशिश करती हूँ, मुझे मिला तो आपके लिए लगा देंगे। बहुत शुक्रिया, आप सब भाइयों को वेलकम कहते हैं। और चाचा खालिद आप हमारे साथ हैं जी, कहते हैं जी चाचा कर सकते हैं। और इनके अलावा तमाम हमारे गानों भी लिखे हुआ है, बिल्कुल तमाम जो गानों भी हिलायूं था। मकसूद मला हमारे साथ कहते हैं मेरापुर से हेलो आरजेन डीजे सिद्रा मुस्कान साहिबा, मुझे शमन का गाना सुना दें। बिल्कुल जी, शमन का गाना आपने सुन लिया होगा, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। और मीरपुर खास से अब्दुल्ला महर भाई कहते हैं बाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम प्यारे भाई। और आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर रहे हैं, ये

जिन सुञा तो रब खे से आशिक थिया ओशा।

क्या बात है, बहुत ही सुपर कूल सा गाना जिसे आप एंजॉय कर रहे हो साथ ही साथ। अगर आप भी हमारे साथ मौजूद है तो अपने होने का एहसास लाते जाइए। आप मुझे ज्वाइन करते जा रहे हैं 888 पर और फेसबुक पर। उन्हें कहा अलावा, हाँ जी बिल्कुल, असा के रुगो हा में हाय आई जे की वरी हा में हा कना मुखे लगना थोड़ा उए मानू भला हूं गए जो तो हा में हा तक अंता नी कुछ मानन के तो सिर्फ न हो दिया न न पुछ डीज कंप्यूटर के मन दा न बाबा डीज कंप्यूटर क्रीम दे इस्तेमाल करो, हा में हा कना करो सही आ आई इस्तेमाल भी करो, ये हा में हा खाली न करो इस्तेमाल करो न खपोता वनी हा चो आई डीज कंप्यूटर क्रीम। अगर ताजे करीबी जनरल स्टोर से कोने मिले थी तो तमा नंबर से राबतो करे पाजे करीबी जनरल स्टोर से डीज कंप्यूटर क्रीम की अवेलेबल भी कराए सगो था। सो डीज कंप्यूटर क्रीम आहे डीज के जो फेस वॉश आहे तमा के लो प्रोडक्ट लगाइंदा या फिर लगायो था मुखे बुधाई जो।

मेरे चाचा कहते हैं कि मैंने आपकी पोस्ट को बहुत ज्यादा शेयर कर दिया है. बहुत शुक्रिया चाचा, थैंक यू सो मच, आप हमारी पोस्ट को शेयर कर देते हैं. और हमारे सारे साजिद हुसैन सुमरो, शो वेरी नाइस है, डी स्किन ब्यूटी क्रीम वेरी वेरी नाइस है. डीआईजी ऑफिस लाड़काना से आप हमें सुन रहे हो, फायजा का गाना सुनना चाहते थे, सुने जी फायजा का गाना. और हमारे साथ रमजान भाई, आपने लिंक शेयर कर दी, ओके हो गया. अब्दुल गफार भाई हमारे साथ कहते लाजवाब शो मेलसी से आप हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया प्यारे प्यारे भाई. और अली रजा लगारी भा तमाम गानों केड़ो चयो हो. ओके ओके ओके, तमाम डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो था तमाम के रिजल्ट भलो दिनो था. सो बात सही बा रमजान भाई कहते हैं हाँ भा ठीक है तमाम जो बिल्कुल गानो हलायो था. और अबू हनीफ लिखते हैं कि 7 अरब लोगों में किसी एक शख्स का पसंद आना और जिंदगी में उसका ना मिलना उससे बड़ा खसारा नहीं हो सकता. क्या बात है जी, ये तो बढ़िया हो गया. और हिदायतुल्लाह कहते हैं कि हाले दिल तुमको सुनाए तो सुनाए कैसे जख्म जो तुमने. भाई क्या हो गया हिदायतुल्लाह, मुझे लग रहा है आपको किसी ने ना ऐसा रेंडम सा मैसेज कर दिया है और इस रेंडम से मैसेज की वजह से आपका थोड़ा दिमाग जो है ना वो सटक गया है. तो ऐसे रेंडम से मैसेजेस के ऊपर ध्यान ना दिया करें. आप हमारे प्यारे भाई हैं और आपकी होने से प्रोग्राम में रौनकें होती हैं. तो इस तरह की जो नेगेटिव थॉट्स हैं चीजें हैं वो अपनी जिंदगी से निकाल दें, नेगेटिव लोगों को ब्लॉक मार दें और डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाते रहिए. नजीर खोसो भाई हमें सुन रहे बलूचिस्तान से, बहुत शुक्रिया जी. कहते हैं कि जिंदगी का हौसला देखो, सख्त चट्टानों और कठिन हालात के बावजूद जहाँ उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आती वहाँ भी जिंदगी अपना रास्ता बना ही लेते हैं. ये दरख्त हमें सिखाता है कि जब अजम मजबूत हो तो पत्थर भी रास्ता देने पर मजबूर हो जाते हैं. बिल्कुल, आपने देखो कितनी अच्छी बात शेयर कर दी. अच्छा भाई, चंड जो दरिए से केड़ो ताल्लुक है, चंड जो दरिए से अलग केड़ो ताल्लुक है बाबा, मुखे या चीज खबर ना है, बस मुखिया खबर है. तो तमाम जो डी स्किन ब्यूटी क्रीम से ताल्लुक है तमाम डी स्किन ब्यूटी क्रीम का परे न था रही सको. डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर तमाम एरिया में नहीं मिले तो तमाम झट सा होने के नंबर ते रातो गए अवेलेबल कराए बैठो था. और अब्दुल्ला महर कहते हैं मीरपुर खास से, कल वाला उधार है सॉन्ग हुमेरा चन्ना का डेडिकेट आपको. अरे भाई, हुमेरा चन्ना का गाना आपको सुना देंगे, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हमारे प्यारे भाई. और हमारे साथ हैं ये महल आबाद पता नहीं क्या गुलाम शबीर अबड़ो हमारे साथ है. अच्छा कहते हैं दिन है तो रात भी है, बादल है तो बरसात भी होगी, ए दिल गम ना कर महबूब है तो महबूब है तो मुलाकात भी होगी. बाजी सिद्रा मुस्कान सरवर सकरानी की आवाज में कलाम सुनाइए, मतलब जा सब मानो यार केर तो केंजी लाए मरे. मां दिसां थी भा मुखे मिलियो गानो तो तमाज ले हलाए वठुंदा, बहुत शुक्रिया तमा से सगड मौजूद आयो. डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो आ कोन मुखे लाजमी बुधाई ना कयो. और हमारे साथी गोठ मोहम्मद तैयब थेबू से अभी बुला थेबू कहते हैं आपका शुवरी नाई से आपको सलाम जी वालेकुम अस्सलाम. मकसूद वाला कहते हैं सिद्रा मुस्कान मेरी जिंदगी में बहुत नुकसान हुआ है, बता भी नहीं सकता, चुप भी नहीं रह सकता. हाँ यह भली गल. ओके, और हमारे साथ ये सलाम उस्ताद सिड्डो बाजी, जिस दिन आपका प्रोग्राम सुनता हूँ माइंड 10x काम करता है, बहुत जल्दी सबक याद हो जाता है, क्या लॉजिक है समझ नहीं आता. फिर दोस्त मोरो से हमारे साथ मौजूद है भाई, ये तो अच्छी बात है ना, प्रोग्राम सुनते सुनते आप अपने सारे काम किया करें. और दोबारा से आपने मैसेज किया है, हाँ वही मैसेज आपने दोबारा से शेयर कर दिया है, बहुत शुक्रिया. फिर दोस्त भाई आपको वेलकम कहते हैं, खुश रहे हमेशा, जीते रहे. और गुल हसन निंदवानी हमारे साथ है, शो वेरी वेरी नाइस आपका. प्लीज सिद्रा जलाल जोगी का सॉन्ग सुनाएं, फरमाइश है मेरा बेटा आजाद खान और आमिर खान मोहम्मद रिजवान. ओके जी, सब भाइयों को वेलकम कहते हैं, आप हमारे प्रोग्राम में मौजूद है, थैंक यू सो मच. डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे ही नहीं बताया करें. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना वो आप सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आप मर्द भी लगा सकते हैं और आप खवातीन भी इस्तेमाल कर सकती हैं. तो जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं उन सारे लोगों के लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम तैयार की गई है. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम की ये भी खास बात है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना ये एक मेडिकेटेड फार्मूला है. तो मेडिकेटेड फार्मूला होने का जो फायदा आप लोगों को मिलने वाला है वो सबसे बड़ा ये मिलने वाला है कि भाई आप हर स्किन के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, हर कोई इस्तेमाल कर सकता है. तो इतना कमाल और शानदार सा प्रोडक्ट आपके पास मौजूद है तो उसे फायदा उठाइए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करते जाइए.

हाँ भैया, झंडो मरी वारा नजर कौन आया ना, बिल्कुल मां भी चीज नोटिस कई झंडो मरी वारा लगे तो वाकई चाचा डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज करने वया है। सुठी गाल है, डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज कर हिकड़ो डी मोकल करे डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज करने वया है। अच्छा रिजवान अली हमारे साथ ही, हाय बहन कैसी हो, शो आपका नाइस है, थैंक यू वेरी मच रिजवान। और किशोर भाई लिखते हैं कि तुलसी अच्छा शो के बीच में वाकई जब आपको कॉल सा जाती होगी तो फिर सही नहीं होता होगा। मेहताब अली इंटर भाई हमारे साथ, वालेकुम अस्सलाम, गुड आफ्टरनून, आपको भी वेलकम कहते हैं हमारे प्यारे मेहताब भाई। और रिजवान लिखते हैं कि कैसी तेरी खुदगर्जी सॉन्ग प्ले करना, ये गाना आपको मैं सुनाऊंगी 5 बजे वाले प्रोग्राम में। और कहते हैं कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम का रिजल्ट नाइस है, आप बस गाना प्ले करना। ओके ओके अच्छा। हिदायतुल्लाह लिखते हैं कि सूखे पत्तों की तरह बिखरे हुए थे हम, किसी ने समेटा भी तो जलाने के लिए, अली जुलूम आता। और फरवा कहती है आपी असाम भी हा में हा करण वारा आयु, अल्लाह जाए बुधाए फरवा, तमाम डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कई को नमुख बुधाए जो। और मधोश हमारे साथ मौजूद है, मधोश भाई पक्का हा पक्का पक्का अल्लाह शाह जी। और हजार भाई हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम में, वालेकुम असलाम कहते हैं आपको भी प्यारे भाई। और कहते लाजवाब जबरदस्त हो, थैंक यू। अलीशा कहती है कि थारो शाह के किस शोक पर आपने अवेलेबल कराई है, भाई मैंने कहा कि आप 2-4 शॉप से जाकर मालूमात लीजिए, एक ना एक शॉप पर तो अवेलेबल हो ही चुके होंगे, तो आप जरा अपने मामू को भेजिएगा और इससे बोलिए कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम नाम लेकर तलब करें, ठीक है। और गुलाम अकबर खास के लिए हमारे साथ मौजूद है, हाय वालेकुम अस्सलाम कैसे हैं, ठीक ठाक है। और मुदस्सिर अबड़ो हमारे साथ है, मुदस्सिर अबड़ो वालेकुम अस्सलाम, आप हमें सुन रहे हैं कहाँ से सुन रहे हैं, कोरेजा, अच्छा कोरेजा विलेज से आपने मुझे ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया मुदस्सिर। और इसी के साथ ये वाला गाना लगाया, ये मुझे प्यारे एक भाई ने फरमाइश किया, रमजान भाई है शायद उन्होंने फरमाइश किया, तो चलिए इस गाने को भी सुन लेते हैं।

क्या बात है, बहुत ही प्यारा गाना, हम तुम हो या डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी होनी चाहिए, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम को नहीं भूलें बाबा, डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करना रहो, खूबसूरती हर किसी की ख्वाहिश होती है जनाब, इसीलिए चाहती हूँ कि आप सब लोग डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते रहिए, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आपकी खूबसूरती में चार चांद लगा देगा। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम की ये बात बड़ी कमाल की लगती है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम हर स्किन के ऊपर सूट करने वाला प्रोडक्ट है, और मर्द हजरात खवातीन आप सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही साथ डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर जो है ना विटामिन ई बीट्स है, माइक्रो बीट्स फार्मुलेशन है, अल्फारबुटीन है, कोजिक एसिड है, ग्लूटाथायोन है, ये जितनी भी चीजें ऐड की गई है जनाब, वो इसलिए आप लोग जब इस्तेमाल करेंगे तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लोगों को रिजल्ट्स देने वाली है, ऐसे जैसे आपने कोई महंगा सा फेशियल कराया हो। तो अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अच्छे से बेहतर तरीके से जान चुके होंगे कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम वाकई कितना कमाल का प्रोडक्ट है। और इसी के साथ साथ ये 2-in-1 फार्मूला है, साथ साथ जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज करें तो ये डॉक्टर माइका जो फोटो है ना वो देकर लाजमी परचेज कीजिएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप सही प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन का फेस वॉश आपके लिए हर जगह अवेलेबल करा दिया है, जाइए और अपने हिस्से की डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश परचेज कराइए। अच्छा, गुल हसन निंदवानी भाई लिखते हैं कि बाजी सिद्रा मेरी बेटी फातिमा भी आपका शो सुनती हैं, फातिमा को वेलकम कहते हैं, बहुत शुक्रिया के साथ। अच्छा मुगल उमरानी भाई आपको भी वेलकम हो गया, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। दर्दी दिल कहती हैं कि नाइस शो था आज का, आयशा को भी पसंद आया, बहुत शुक्रिया आयशा। अच्छा ये मदन पंडित हमारे साथ हैं, मदन पंडित हमें सुन रहे हैं जी, आप हमें कहाँ से सुन रहे हैं? हेलो मैम, मैं नेपाल से आप हमारे साथ हैं, अच्छा हमारा शो सुन रहे हैं, नमस्ते जी नमस्ते, बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम, वेलकम मदन पंडित जी।

जवाद अली कोरे जो है लिखते हैं कि दलील थी ना कोई हवाला था उनके पास, अजीब लोग थे बस इख्तलाफ रखते थे. क्या बात है, क्या बात है. ईश्वर भाई कहते हैं कि अहमद मुगल जो आवाज सिंध टीवी जो दौर याद जा रहा है तो अल्लाह भली गाला ना पुरानी चीजों से ना याद करण गुर्जर. यासिन खान कहते हैं कि मैं जॉब करता हूँ. चले अच्छी बात है, जॉब करे और अच्छी अच्छे से डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाते रहे. और कहते हैं बिल्कुल जी, चार चांद लगा देगी डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके चेहरे पर. बिल्कुल जी, चार चांद लग जाएंगे जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते रहेंगे. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते रहिए और खूबसूरत होते रहिए.

हमारा प्रोग्राम बहुत ज्यादा सुना जाता है, हर जगह सुना जाता है, इंडिया हो, नेपाल हो और हर जगह। ये तो भाई आप लोगों की मोहब्बत है कि आप हमारी पोस्ट को शेयर कर देते हैं, ये शेयरिंग का कमाल है। तो इसीलिए कहती हूँ पोस्ट को लाइक और शेयर कर दिया करें, ताकि हमारी जो पोस्ट है ना वो ऐसे ही हर जगह पहुंच जाए और सारे लोग जान जाए कि भाई साहब आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश आप लोगों की खूबसूरती के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स लगा के देखे हैं, लेकिन जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करेंगे तब भाई जान बात ही कुछ और होगी। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइए और अपने चेहरे पर ऐसा प्रोडक्ट लगाइए जो कि मेडिकेटेड फार्मूले के साथ तैयार किया गया है और आपकी स्किन के लिए कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश लगाइए और मुझे बताइए आपको रिजल्ट कैसे मिले हैं। अच्छा ज्वेलरी का खालिक लाशारी कहते हैं शो A1, थैंक यू वेरी मच, तवां जो मोबाइल एंड प्रोग्राम पसंद आयो। हाँ बाबा तवां जो टॉपिक वारो मैसेज पढ़ी वरतो सिंह किशोर भा, और ये कहते हैं कि इसीलिए तो 10 साल से आपका शो सुनता आ रहा हूँ यासीन खंड बारे साथ। 10 साल हो चुके हैं क्या मुझे प्रोग्राम करते करते? नहीं 9 साल हुए हैं।

पे जी तुंहिंजी दिलि मोसा नाहे पर तव्हांजी दिलि डी स्किन ब्यूटी क्रीम सां लॻी वेंदी जॾहिं तव्हां इस्तेमालु करे ॾिसंदा. माण्हुनि सां दिलि लॻाईंदा त हीअ ॾुख ई मिलंदो, पर जॾहिं तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम सां दिलि लॻाईंदा त ख़ूबसूरती बि मिलंदी ऐं तव्हां सेटिस्फाइड बि हूंदा. अच्छा बिल्कुलु तव्हांखे गानो ॿुधणु ॾींदासीं.

0: अच्छा अदा कहते हैं कि मुखे डीटी जो मैसेज आयो हो चाहिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम के था मिलंदी डीटी के तां बुधाए छियो तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम हाने तवां जे मुल्क में भी अवेलेबल कराए छडी आए भीड़ में तन्हाई में वाकई मुझे डी स्किन ब्यूटी क्रीम याद आती है आप अपना बताइए और इसी के साथ यहाँ पर टाइम हुआ है जनाब आप लोगों से इजाजत लेने का वरी तां से मुलाकात मुझी जी का थे पई वो 5 बजे वाले प्रोग्राम में थींदी बिल्कुल जनाब से पांचो इलाही सारो ख्याल रखना किथे का गलती थी हुजे तो माजरत जिनो को फीडबैक रहिजी वयो को गानड़ो शानड़ो रहिजी वयो है सो माजरत मोकलानी नाही बाबू सिन सलामत सा सलामत अल्लाह हाफिज बाय बाय लव यू ऑल एंड टेक केयर
1: It's 3 p.m. This time check is brought to you by
0: White-ish Beauty Cream. Glowing Skin Jo Raaz. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM Network पर KTN News.
3: Brought to you by Super White Rice Collagen Beauty Cream. A product by Aksa Cosmetics Pakistan.

0: केपीके में गवर्नर राज लागू कजे या इमरजेंसी, वजीर आजम जे इजलास बाद बेसदर केपीके जी सूरत हाल ते अहम इजलास सराय वरतो। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लागू करण या इमरजेंसी बाबत मुख्तलिफ ऑप्शन से मुशावरत कई वेंदी। वजीर आजम शहबाज शरीफ, वफाकी वजीर ऐं आला सरकारी अमलदारनि जी शिरकत जो इम्कान। केपीके जे अमन अमान वारी सूरत हाल, इंतज़ामी मामलनि ऐं सूबे जे मौजूदा सियासी सूरत हाल जो बि जाइज़ो वरितो वेंदो। केपीके में गवर्नर राज या इमरजेंसी बाबति हतमी फ़ैसिलो कयो वेंदो। वज़ीर आज़म वटि थियल इजलास में घरू वज़ीर अमन अमान जी सूरत हाल ऐं कानून वारे वज़ीर सेनेटर आज़म नज़ीर तारण गवर्नर राज या इमरजेंसी बाबति कानून ऐं आइन बाबति ब्रीफ कयो हो।
1: ऐसा इकदाम करते हैं, चाहे वो इमरजेंसी हो चाहे वो गवर्नर रूल हो, तो उससे सूबे के हालात मजीद खराब हो जाएंगे। आप एक मैंडेट को खत्म कर रहे हैं, आप एक और क्राइसिस को दावत दे रहे हैं, जबकि हम कह रहे हैं कि चार साल से जो क्राइसिस चले उसको खत्म। थांग मार्च अगर हमारा है वो इंटर से और अमन होगा, बिल्कुल एहतजाज करेंगे, ये गलत है और हम उसकी मजम्मत करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है और सारे जो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हो वो हम करेंगे।
0: केपीके में को भी गैर कानूनी या गैर आइनी कदम न खणण घुर्जे। गवर्नर राज या इमरजेंसी से हालतूं खराब थन्दू। पीडीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर है असो लॉन्ग मार्च पुरमर है, गैर कानूनी या गैर आइनी कदम खिलाफ समूरा घुर्बल कदम खणंदी। मजबूत वफाक ला खुद मुख्तियार सूबो जरूरी है, असेंबली न टोड़ी। डीजी एसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ शाम 5 वगे प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदो। पाक फौज जो तर्जुमान दहशतगर्दन खिलाफ कार्रवाई बाबत ब्रीफ कंदो। गलतियुनि मां न सिखंदासीं त कॾहिं बि तरक़ी न करे सघंदासीं। अस्करी कामयाबियुनि सां गॾु मुआशी कामयाबियुनि में बि फील्ड मार्शल जो किरदारु सारा जोगो रहियो आहे। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो आहे त फील्ड मार्शल जे ज़िक्र खां सवाइ समूरियूं कामयाबियूं अणपूरियूं आहिनि। IMF जे सरबराहनि चयो त ही नओ पाकिस्तान आहे। बजट में ॾिनल मराहतनि जा नतीजा साम्हूं अची रहिया आहिनि। पूरी दुनिया में पाकिस्तान हिकु मिसाल क़ाइमु कयो। इनशाला ईंदड़ वक़्त में पाकिस्तान दुनिया जे मज़बूत मैशियत हूंदो। वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह जी सदारत हेठि काबीना जो इजलास। सरकारी ज़मीननि जी अलाटमेंट ऐं इस्तेमाल बाबति नओं कानून आणण जो फ़ैसिलो। कॉलोनाइज़ेशन एंड डिस्पोज़ल ऑफ गवर्नमेंट लैंड एक्ट 1912 जे जाइ ते सिंध गवर्नमेंट लैंडर मैनेजमेंट एक्ट 2026 जो मसौदो पेश। मुराद अली शाह जे काबीना मेंबर्स ते नए कानून ते 10 ॾींहं अंदरि तजवीज़ूं ॾियण जी हिदायत। मीर रज़ा केस जी जांच कंदड़ अदालती कमीशन जे मुदे में बि 15 ॾींहनि जी वाद। कमीशन 15 अक्टूबर ताईं कम करे सघंदी। सैद मुराद अली शाह चयो आहे त सिंध गवर्नमेंट लैंडर मैनेजमेंट एक्ट 2026 बाबति फ़ैसिलो काबीना जे ईंदड़ इजलास में कयो वेंदो। सीड़पकारीअ खे हथी ॾियण लाइ कम करे रहिया आहियूं। मुआशी इशारा बि मुसबत आहिनि। असांजो हदफ़ बरामदात ते ॿधल मुशियत आहे। नाणे वारे वफ़ाकी वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब चयो आहे त परॾेही सीड़पकारनि सां गॾु मक़ामी सीड़पकारीअ खे बि सीड़प तरफ़ आणणो आहे। महांगाई बि सिंगर डिजिट ते आंदी हुई, जेका ख़िते में जंग सबबि वधी। FIBR सुठो कम करे पई, सेप्टेम्बर जो हदफ़ हासिल कयो आहे। सियासी इस्तेकाम लाइ बि वेही ॻाल्हियूं करणियूं पवंदियूं। पाकिस्तान जे अफ़ग़ानिस्तान में दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ फिज़ाई कार्रवाई। 22 ख़ारजी दहशतगर्द मारिजी विया। सुत समा वारे वज़ारत मूजिबि ऑपरेशन गज़बुल हक़ तहत अफ़ग़ानिस्तान में कार्रवाई कई वई। ॿिनि हंधनि खे निशानो बणाए दहशतगर्दनि जे कैंपनि खे तबाह कयो वियो। सिक्योरिटी फोर्सिस जो केपीके ऐं बलोचिस्तान में ऑपरेशन, केतिरा ई दहशतगर्द मारिजी विया। बलोचिस्तान जे ज़िले कच्छे में फोर्सिस जी कार्रवाई, 6 दहशतगर्द मारिजी विया। सिक्योरिटी फोर्सिस मूजिबि दहशतगर्दनि खे क्वाड कॉप्टर ज़रिए निशानो बणायो वियो। फोर्सिस जे उत्तर वज़ीरिस्तान में बि कार्रवाई कई, केतिरा ई दहशतगर्द मारिजी विया। ईरान ते ॿीहर हमिलो करणो आहे या मुआहिदो फ़ैसिलो करण वारो आहियां, मामिलो जल्दी पुॼाणी तरफ़ वधी रहियो आहे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो बयान। दिफ़ा वारे वज़ीर पैट हेग्सेथ चयो आहे त अमेरिका ईरानी बहरिया फिज़ाई ऐं दिफ़ाई सलाहियत खे मुकमिल तौर ते ख़तम करे छॾियो आहे। हाणे ईरान मफ़लूज मुल्क आहे। सऊदी अरब कहें भी हमले या खतरे जो जवाब देने में नकी बाइंदो सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान शुरा काउंसिल जे सालन इजलास के खिताब कंदे हुसैन अफरा तफरी तबाही खिते के धमकाने की चूंड कई है। सऊदी अरब सूडान की वहदत की हिमायत भी जारी रख। नेतन्याहू की मेजबानी जहां नतीजा सुठा न निकरंदा। ईरान के कौमी सलामती बाबत सलाहकार मोहसिन रजाई है अमेरिकी अड्डन यूए के सिक्योरिटी फ्राहम न कई अड़ी तरह खजानची कासाई के मेजबान गडियल अरब इमारत के फायदो न डी यूए गुजरियल जंगन में सबक सीखे जंगियों भड़कान का पासो करे। कराची की अदालत में ड्रग्स डीलर अनमोल उर्फ पिंकी खिलाफ मंशात केस की बुधनी अदालत पारा पिंकी के वीडियो लिंक जरिए पेश न करने कावड़ जो इजहार किया। प्रोडक्शन आर्डर जारी किया। वुमेन जेल सुप्रिटेंडेंट का जवाब तलब बुधनी मुलतवी कई वही। आल सिंध प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन पारा मुतालबन की मंता लाए 12 अक्टूबर का समूरे सिंध में मुजाहरन जो ऐलान। दादू में आल सिंध प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन के प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान सर्विस स्ट्रक्चर प्रमोशन जबरी बदलिन बायोमेट्रिक के उस्ताद दुश्मन बनाया वो है। 14 अक्टूबर से ताल के हेडक्वार्टर्स 19 अक्टूबर से जिले हेडक्वार्टर्स में रैलियों निकरंदियों। हुकूमत प्राइमरी उस्तादन का जायज मुतालबा तस्लीम करे। तलहार में सारन जो मुनासिब अघ न मिलने खिलाफ जेयूआई जो धरणो। सारन जो मुनासिब अघ न मिलने खिलाफ वीरो लाशारिया का रैली कढ़ी बदीन स्टाफ ते धरणो वो अगवान सारियालो फसल लहंदे ही कारखानेदार माफिया एक हटी कायम कर सारन जो अथरादू अघ मुकर्र किया है। इंतजामिया नोटिस वे आबादकारन जो मुआशी कतल बंद कर।

खैरपुर नाथन शाह में समाजी कारकुनन मोहम्मद बलोच के कातिल की गिरफ्तारी लाए वारसन जो एतजाज जवाबदार गिरफ्तार करने मुतालबो मकतूल के वारसन जो चवण है मकतूल के बेगुनाह कतल किया है पुलिस कातिल गिरफ्तार नथी करे कातिल गिरफ्तार कर इंसाफ कयो वने गढ़ी यासिन में फुर मज़ामत टे जणा जख्मी हथियार बंदन लोडर रक्षा फुर दौरान मज़ामत अली जान गुलाम मुस्तफ़ा ए मोहम्मद यूसुफ के जख्मी कयो सन में गोठाणन जो पीण जे पानी ए ज़रई पानी जे कोट खिलाफ़ धरणो आबादगारन ए गोठाणन छछर पंपिंग स्कीम वट धरणो हयो मुजाहिरन चयो त गोठन जी बिजली कटी वई आहे पीण जे पाणी जी भी शदीद खोट पैदा थी वई आहे पाणी फराम करे परेशानी खत्म कई वञे

0: ऐं दुनिया जे पहिरें सिंधी सेटेलाइट चैनल केटीएन जी 24, केटीएन न्यूज़ जी 19 ऐं म्यूज़िक चैनल कशिश जी 21 सालगिरह। केटीएन पारां सिंध वासियुनि खे ड्रामनि ऐं ॿियनि प्रोग्रामनि ज़रिए तफ़रीह पहुचाइण वारो सिलसिलो जारी आहे। कशिश सिंधी म्यूज़िक जे जियापे जो ज़रियो बणियल आहे। केटीएन न्यूज़ सिंध जे ॿरंदड़ मसलनि ते हिन वक़्तु बि सिंध जो सभ खां वधीक ऐं मुयसर आवाज़ बणियल आहे। पाणीअ जो मसलो हुजे या NFC अमुन अमान जी सूरतहाल हुजे या ॿिया मसला, केटीएन न्यूज़ सिंध वासियुनि जो आवाज़ बणियल।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: Brought to you by सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम, मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। आप प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
3: अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है। तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की? ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
4: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
5: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
4: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। And I am using vitamin C cream for best and glowing clean skin.
5: Achha, variants sabke different, lekin choice sabki hai.
6: Super White!
7: सिंध के माथे का झूमर
8: GFM 88 नेटवर्क,
7: सिंध की आवाज।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
2: फटिया पिया चिकन चाक

بل میں تعین

पुछन बियो भेरो ये कुर्बानी केर थियो ओ पागल कजी तो दिया ओ हियो सारु हथन मनी खा विलायत में अग्यो अजीबल ओ तेरी मान चवल कहिया कुर्बानी केर थियो ओ बला ओ मिया।

दे सिव्या तन जी का गल कर खबर सब मड़ाया सोन में पखी तुझा पर ओ भूमि मथों घर।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: It's 4 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News. आप
3: वो तो वफ़ाक लाइ खुद मुख्तियार सूबा ज़रूरी आहे असेंबली न टोड़ींदासीं डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ शाम 5 वगे प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदो पाक फौज जो तर्जमान दहशतगर्दन खिलाफ कार्रवाई बाबत ब्रीफ कंदो गलतियों मां न सिखंदासीं त कदें भी तरक्की न करे सकंदासीं अस्करी कामयाबियों सां गॾु मुआशी कामयाबियों में भी फील्ड मार्शल जो किरदार सारा जोगो रहियो आहे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चयो आहे त फील्ड मार्शल जे ज़िक्र खां सवाइ समूरियूं कामयाबियूं अणपूरियूं आहिनि IMF जे सरबराह चयो त हीउ नओं पाकिस्तान आहे बजट में ॾिनल मराइतनि जा नतीजा साम्हूं अची रहिया आहिनि पूरी दुनिया में पाकिस्तान हिकु मिसाल क़ाइमु कयो इनशाला ईंदड़ वक़्त में पाकिस्तान दुनिया जे मज़बूत महशियत हूंदो
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
4: अब थोड़ा मी टाइम बनता है हाँ तो और क्या सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम अब स्किन की केयर करें कल बारात पे भी जाना है तुम स्ट्रॉबेरी वाली वो भी सुपर वाइट की ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है तुम कौन सी यूज करती हो
5: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है
6: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम
5: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी And I am using vitamin C cream for best and glowing clean skin.
6: अच्छा, variants सबके different, लेकिन choice सबकी है. Super.

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: ऐं बीरोन की स्किन हर इन्हें जलाए छा डैमेज ऐं डल स्किन के कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जंहिं में आहिनि चांवरनि जूं खूबियूं ऐं कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जल्द के रिस्टोर करे हुन जी नमी खे लॉक करे ऐं चांवरनि जूं खूबियूं जल्द मां फाइन लाइन्स ऐं झुरनि खे घटि कनि ऐं रिंकल्स खे घटि करे सिर्फ़ टिनि ॾींहनि में जल्द खे बणाए नरम मुलायम ऐं ब्राइट उन सां गॾो गॾु सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जंहिंजी हर कतरे सां चेहरे खे मिले वधीक ख़ूबसूरती हाणे हर ॾींहुं रहो ब्यूटिफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर दिन का

0: हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: Why not wind up the two of the best? Why not wind up the two of the best?

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: ऐं दुनिया जे पहिरें सिंधी सेटेलाइट चैनल KTN जी 24 KTN न्यूज़ जी 19 ऐं म्यूज़िक चैनल कशिश जी 21 सालगिरह KTN पारां सिंध वासियुनि खे ड्रामनि ऐं ॿियनि प्रोग्राम्स ज़रिए तफ़री पहुचाइण वारो सिलसिलो जारी कशिश सिंधी म्यूज़िक जे जियापे जो ज़रियो बणियल KTN न्यूज़ सिंध जे भरंदड़ मसलनि ते हिन वक़्तु बि सिंध जो सभ खां वधीक ऐं मौसर आवाज़ बणियल पाणी जो मसलो हुजे या NFC अमन अमान जी सूरतयाल हुजे या ॿिया मसला KTN न्यूज़ सिंध वासियुनि जो आवाज़ बणियल
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
2: Brought to you by सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान
3: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज
4: ॾाढो सुठो
3: GAFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज़

अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक। रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप। वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज़। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: बिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

अच्छे हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: यू कैन सी द सुपरमैन, प्लीज आई मेरा भाई कारण हमें बताएं आपके क्या क्या करते रहे तो दी मूसा ये है जी हवलदार आसिफ मोहम्मद आसिफ प्रोफेसर जी हु हैज बीन चुनाव वाली कोर्ट की तरफ गई जो सेकंड वाली सेकंड नो दिस इज द मेनर मोहम्मद आसिफ एलियस आसिफ मूसा चुनाव कोर्ट ने इनको दी उसकी डेड बॉडी हिज डेड बॉडी वाज रिकवर्ड बाय चुनाव कोर्ट एज पर देम ऑन 30th So I would request my dear friend Hawaldar Asif to tell something about himself that you see.
1: मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है मैं बेसिकली इससे कटक से इतनी देर पर रहने वाला हूँ कल पिछले टाइम कुछ दोस्तों ने मुझे कॉल की थी ये सोशल मीडिया पर चल रहा है कि आपको इंडियन आर्मी ने कश्मीर में शहीद कर दिया आप किधर हैं मैंने कहा मैं बोल रहा हूँ आपके सामने हूँ मैं जिंदा अलहमदुल्ला इसके बाद मुझे इंडियन नंबर से कॉल आने शुरू हुई उन्होंने मेरे से साथ ही डॉक्टर पूछना शुरू किया कि आप किधर हैं कौन हैं उससे क्या लगते हैं मैं वो नंबर बुला करता हूँ फिर इसके बाद सोशल मीडिया पर मुझे आई एन एस पता चला कि इंडियन जो मीडिया है उन्होंने आपका जो डाटा है उसको इस्तेमाल करके आपको ऊंची कार्रवाई में कश्मीर में शहीद कर दिया मुझे तो बहुत बहुत हैरानी हो रही है क्या हो रहा है मैं घर में बैठा हूँ किधर उन्होंने मुझे शहीद कर दिया ये बहुत ही घनौना और झूठा और घटिया इल्जाम जो इंडियन मीडिया ने पकड़ा मैं इसकी जमा करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिंदा हूँ और आपके सामने हूँ
2: भारतीय फौजों फार्स फ्लैग ऑपरेशन एक भेरो का पाक फौज अगोणे एसएसजी कमांडो के मारण जी दावा कूड़ी निकते आसिफ उर्फ मोहम्मद मूसा मीडिया डो पेश आसिफ उर्फ मूसा चाहिए भारतीय फौज जी दावा बाद मुख्य फोन अचान शुरू थे भारतीय फौज पारा मुकाबले में मरण वाली दावा ते हैरत थी मां जिंदा आया ए सबनी जे सामू आया 2000 में फौज में भर्ती थियो 17 सालन बाद एसएसजी मां रिटायर्ड थियस हाने फैमिली सागर टांदो आया

0: ऐं दुनिया जे पहिरीं सिंधी सेटेलाइट चैनल KTN जी 24 KTN न्यूज़ जी 19वीं ऐं म्यूज़िक चैनल कशिश जी 21वीं सालगिरह KTN पारां सिंध वासियुनि खे ड्रामनि ऐं ॿियनि प्रोग्राम्स ज़रिए तफ़रीह पहुचाइण वारो सिलसिलो जारी कशिश सिंधी म्यूज़िक जे जियापे जो ज़रियो बणियल KTN न्यूज़ सिंध जे ॿरंदड़ मसलनि ते हिन वक़्तु बि सिंध जो सभ खां वधीक मौसर आवाज़ बणियल पाणीअ जो मसलो हुजे या NFC अमन अमान जी सूरतयाल हुजे या ॿिया मसला KTN न्यूज़ सिंध वासियुनि जो आवाज़ बणियल
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
2: Brought to you by सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान
3: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है हाँ तो और क्या सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम अब स्किन की केयर करें कल बारात पे भी जाना है तुम स्ट्रॉबेरी वाली वो भी सुपर वाइट की ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है तुम कौन सी यूज करती हो
4: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है
5: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम
4: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी And I am using vitamin C cream for best and glowing clean skin.
5: अच्छा, variants सबके different, लेकिन choice सबकी है.
6: Super white.
7: सिंध के माथे का झूमर
8: GFM 88 नेटवर्क
7: सिंध की आवाज

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
3: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
2: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
1: Brought to you by Super White Rice Collagen Beauty Cream. A project by Aksa Cosmetics Pakistan.
0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
1: Brought to you by Super White Oil Free Beauty Cream. मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए Super White Oil Free

सरदार आसिफ अली जरदारी सां वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ जी मुलाकात के पीमे सिक्योरिटी सूरतहाल ते गणती जो इज़हार दहशतगर्दी ख़िलाफ़ क़ौमी अज़म वधीक मज़बूत बणण ते इतफ़ाक़ मुल्क अंदर अमन ऐं इस्तेहकाम लाइ इदारनि में सहकार बहितर करण ते ज़ोर भरियो वियो। पीटीआई सां ॻाल्हियुनि लाइ पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग जी गॾियल टीम जोड़ी वई। सुभाणे पीटीआई सां ॻाल्हियूं कंदो वफ़द में मोहसिन नक़वी सनाउल्लाह राणा सनाउल्ला अमीर मुकाम शरीर रहमान नवीद कमर ऐं एजाज़ जखाणी शामिल। सरदार ऐं वज़ीर आज़म जी मुलाकात में इसहाक डार मोहसिन नक़वी राणा सनाउल्ला अटारनी जनरल मंसूर उस्मान सेनेटर शरीर रहमान सलीम मांडवी वाला सीनियर वज़ीर शाह जिला मेमण ऐं नासिर शाह बि मौजूदु हुआ।

0: एक लॉन्ग मार्च करने जा रही है। कुछ दिन पहले खबरें हुई कि बागी पीटीआई इमरान खान से कुछ हाई मिलिट्री ऑफिशियल्स की अडयाला जेल में मुलाकातें हुई हैं, तो इस हवाले से कुछ बताएं कि क्या समस्या है।
1: आर्मी हैज गॉट नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स एंड वी विल नॉट आस्क एनीथिंग अबाउट पॉलिटिक्स। आई हैव मेड इट रिपीटेडली क्लियर, पॉलिटिक्स इज फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज, द गवर्नमेंट्स आर मेड बाय द पॉलिटिशियंस फॉर द गवर्नमेंट एंड द पॉलिटिकल पार्टीज। सो आई विल अगेन रिक्वेस्ट अगेन एंड अगेन, प्लीज डोंट डू दैट। As far as your first question is concerned, इसका legal या पूरा status जो है वो government और जो Ministry of Law and Justice are the best man to tell you about। हम आपको ये बता सकते हैं कि ये बड़ी बहुत बड़ा कलंक का टीका है, वो जिंदा हो या मुर्दा वो हिंदुस्तान के मुंह पे लगा हुआ। रियासत है तो सियासत है, रियासत है तो जमहूरियत है, रियासत है तो आप और मैं है।
2: पाक फौज जो सियासत से को भी ताल्लुक न है, सियासत करण सियासी जमातन जो कम है, फौज के भी सियासी मामले जो जवाब न दी। पाक फौज तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद सईद चौधरी है पहले भी वाजे कर चुका हूं, सियासत सियासी जमातन जो कम है, गाल भी सियासी जमातन हुकूमतन विच में थन्दून, मुल्की सलामती से को भी ठा नी, रियासत होंगी तो सियासत भी होंगी, रियासत होंगी तो जमहूरियत भी होंगी, रियासी तो सियासत भी होंगी, रियासत होंगी तो जमहूरियत भी होंगी, रियासत होंगी तो तमाम असा भी हूं। हुकूमत अपोजिशन में बेक टूर अबता कामयाब, पीटीआई अपोजिशन सुबह मुलाकात करते तफाक कर वरतो, बेस्टर गोहर पारा तस्दीक, पीटीआई वफद सुबाने स्पीकर चैम्बर में हुकूमती नुमाइंदन से मुलाकात कर। बेस्टर गोहर है केपी में को भी गैर कानूनी गैर आइनी कदम न करण घुर्जे, राज या एमरजेंसी से हालतू खराब थन्द, असो लॉन्ग मार्च पुरमन है, गैर कानूनी गैर आइनी कदम खिलाफ समूरा भरपल कदम खड़ा। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलाल भुट्टो जरदारी पीटीआई का लॉन्ग मार्च गैर मशहूर तौर खत्म करने का मुतालबो कर छो। बिलाल भुट्टो जरदारी जो केपी के गवर्नर फैसल करीम कुंडी से फोन से राबतो, फैसल करीम बिलाल भुट्टो जरदारी के केपी में दहशतगर्दी वारन वाक्यन बाबत ब्रीफिंग दिनी। बिलाल भुट्टो जरदारी पीटीआई का लॉन्ग मार्च गैर मशहूर तौर खत्म करने का मुतालबो कर केपी हुकूमत दहशतगर्दी खिलाफ जंग वाली सूरत के संभालने में किरदार अदा करें।

4 अक्टूबर से लॉन्ग मार्च लकी मरवत का शुरू 5 मार्च से कुहाट में तरसो जै बाद पेशावर में दाखिल केपी के सूबाई वजीर शफी जान जो ऐलान केपी के वे वजीर सेल अफरीदी लॉन्ग मार्च लाए फंड मुहिम शुरू करें चंदो डींदड़ सीधी रीत भी चंदो जमा कराए सकन था।

0: can see the Superman. Please, find me, brother. कारनामे बताएं आपके क्या क्या करते रहे हैं. तो जी मूसा ये हैं जी हवलदार आसिफ मोहम्मद आसिफ ऑफ एसएसजी who has been चुनाव वाली कोर्ट की तरह चाहिए जो सेकंड वाली सेकंड सेकंड नो दिस इज मिनर मोहम्मद आसिफ एलियस आसिफ मूसा चुनाव कोर्ट ने इनको दी इसकी डेड बॉडी इज डेड बॉडी वाज रिकवर्ड बाय चुनाव कोर्ट एज पर देम ऑन 30 सितंबर. तो आई वुड रिक्वेस्ट माय डियर फ्रेंड हवलदार आसिफ टू टेल समथिंग अबाउट हिमसेल्फ दैट इज
1: मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है. मैं बेसिकली इससे कटक तस्वीर नहीं दे पा रहा हूँ. कल पिछले टाइम कुछ दोस्तों ने मुझे कॉल की थी कि सोशल मीडिया पर चल रहा है कि आपको इंडियन आर्मी ने कश्मीर में शहीद कर दिया. आप किधर हैं? मैंने कहा मैं बोल रहा हूँ आपके सामने हूँ. मैं जिंदा अल्हम्दुलिल्लाह. इसके बाद मुझे इंडियन नंबरों से कॉल आनी शुरू हुई. उन्होंने मेरे से ज्यादा डाटा पूछना शुरू किया कि आप किधर हैं, कौन है, उसको क्या लगते हैं. मैं वो नंबर बुला करता हूँ. और इसके बाद सोशल मीडिया पर मुझे आई नहीं से पता चला कि इंडियन जो मीडिया है उन्होंने आपका जो डाटा है उसको इस्तेमाल करके आपको ऊंची तबाही में कश्मीर में शहीद कर दिया है. मुझे तो बहुत बहुत हैरानी हो रही है. क्या हो रहा है? मैं अभी घर में बैठा हूँ, किधर उन्होंने मुझे शहीद कर दिया? ये बहुत ही घनौना और झूठा और घटिया इल्जाम जो इंडियन मीडिया ने लगाया. मैं इसकी मजम्मत करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिंदा हूँ और आपके सामने हूँ.
2: भारतीय फौज जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन एक भेरो बीहर पे नका पाक फौज के अगोणे एसएसजी कमांडो के मारण वाली दावा कूड़ी निकती. आसिफ उर्फ मोहम्मद मूसा मीडिया आड़ो पेश. आसिफ उर्फ मूसा चयो आहे त भारतीय फौज की दावा बाद मुख्य फोन अचण शुरू थे. भारतीय फौज पारा मुकाबले में मरण वाली दावा ते हैरत थी. मां जिंदा आया ए सबनी जे सामू आया. 2000 में फौज में भर्ती थियस. 18 सालन बाद एसएसजी मां रिटायर थियस. हाणे फैमिली सां गड रहंदो आया.
3: And I think I tried to explain to my brother over here that as far as India is concerned, we are prepared for everything that they are ready to do, because they are an unreliable, a country which believes in deceit and a country which believes in terrorism and which believes in their own hegemony in the region. So the only guarantee of peace against such a country is our own strength. And we, alhamdulillah, the people of Pakistan, its political military leadership and its soldiers, its armed forces have complete confidence in our strength and our cause. So that is the biggest guarantor of peace in this region. We are the biggest guarantor of peace in this region.
2: भारत के को ड्रामो करणो आहे त करे ॾेखारे. असांजो रतेमल वधीक सख़्त हूंदो. DGISPR चयो आहे त किरियल दुश्मन सां टकराव असांजी बदकिस्मती आहे. जेकॾहिं हू कुझु करणु चाहिनि था त कनि. असां सदाई तयारु हूंदा आहियूं. अॼु जो हिंदुस्तान इनकाउंटरिस्तान बणिजी वियो आहे. वाधारियल कश्मीर जी सूरतहाल सभिनी जे साम्हूं आहे. कुलभूषण खे जहाज किरण ते एज़ाज़ ॾिनो वियो. कुलभूषण ज़िंदा हुजे या मुर्दा, भारत जे मुंहं ते दाग़ आहे.